0: बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
1: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए, और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट है जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई, कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले। अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम, तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ। एसिडिटी प्रॉब्लम है, तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ, ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स, बट सेंसिटिविटी। दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
0: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो, तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को? मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी? हाँ, या तो कुछ नहीं?
1: नहीं नहीं, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए, ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड। बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में। कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए। पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो, ताकि वो वेल हाइड्रेटेड।
0: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
1: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज ऐसा सेंसिटिव थिंग। अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो, तो सारा नॉर्मल होता है। इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
0: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को। बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: चले चलो, ये गाना सुना है, चले चलो।
0: चले चलो लगान का,
1: लगान का,
0: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

0: सिंपलेस्ट वे ले लो बाहर। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जा रहा है ये तेल ले अच्छा है ये ले ले इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो ये गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वीनो के ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है, खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाईज है, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासिटामोल है, 500 ml पैरासिटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है।
1: और स्टेरॉइड्स
0: भी आता है, और ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में डालोगे और स्वॉलो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड। मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देके फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजिली मिल जाती है उसके पीछे बहुत ईयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या होगे। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट। इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड।
1: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्या है।
1: तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपल

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे सुदर्शन फाकिर का कलाम। और अब समाप्त फरमाइए प्रेम वर्मदानी का ये गीत नीना और राजेंद्र मेहता की आवाजों में।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंगतरंग कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मधुकर राजस्थानी का लिखा ये गीत, खयाम के संगीत निर्देशन में आवाज है मोहम्मद रफी की।

आइए अब सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में नूर नरवी का कलाम। यह है पंकज उदास की आवाज और नूर नरवी का कलाम।

ये थी राजेंद्र मेहता की आवाज गुलजार का कलाम, और अब सुनते हैं मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाज में इब्राहिम अश्क का कलाम।

0: प्रगति पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। शायर हैं ताहिर फराज रामपुरी।

0: ये थी मिताली सिंह की आवाज और रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत।
1: न जवानी नल चल दी।

0: इस गजल के साथ ही अब आज का रंग का रंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं

0: व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगो वाले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में कार्यक्रम सुनेंगे यादों की महफिल।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं विधाता फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: संगीत भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और किशोर कुमार का गाया हुआ पिघलता आसमान फिल्म का गाना। इंदिवर के बोलो को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो आशा भोसले और शब्बीर कुमार ने गाया है, वर्मा मलिक ने लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने धुन तैयार की है। फिल्म का नाम है राज तिलक।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, संकोच फिल्म का नाम है और आवाज है सुलक्षणा पंडित की।

0: अभी आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है अवधी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: कार्यक्रम का पहला लोकगीत लीजिए सुनिए, अंजनी कुमार व साथियों की आवाज में।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: लोकरंग कार्यक्रम में लीजिए अगला लोकगीत सुनिए रत्नेश द्विवेदी व साथियों की आवाज में।

अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल, आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अब नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतिया बिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित। यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91 16 76 47 46।

0: ही बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, डॉलकर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी बात कार्यक्रम में,
4: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
3: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
4: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें,
5: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
4: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
5: 830 321 99 11 पर भेज दें।

लोकरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला लोकगीत, पद्मा गिद्वानी व साथियों की आवाज में।

पद्मा गिदवानी के गाए हुए इसी लोकगीत के साथ ही समाप्त होता है कार्यक्रम लोक रंग। पावन सरयू हमारी संस्कृति की विरासत है, इसे प्रदूषित न होने दें। हम सब इसकी पवित्रता को बनाए रखने में अपना सहयोग दें। स्वच्छ जल के लिए नदियों को प्रदूषण से बचाएं। व्यक्ति की पहचान उसकी सफलताओं, योग्यताओं, धन और प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि उसके सद्विचारों, अच्छे गुणों और

सत्कर्मों से होती है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का

सभी सुनने वालों का स्वागत करती है आपकी रेडियो दोस्त अफजाला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म दोस्ती से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी। इसी फिल्म के गाने को पसंद किया है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा। आइए सुनते हैं श्रोताओं की पसंद पर दोस्ती फिल्म का ये गाना।

अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर ने फरमाइश भेजी है फिल्म सबक के लिए। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना, बरखा रानी जरा जम के बरसो।

और भी श्रोता हैं जो हमारे फेसबुक पेज पर जिन्होंने लिखा है। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढींगिया। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी ने लिखा है, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से।

बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग हैं और पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार हैं। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से लिखा है ओम प्रकाश राय ने और नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहाकर हैं और पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से फेसबुक पेज पर लिखने वाले हैं सुदर्शन शाह। ओम बगड़िया गांव मंडी वाला फाजिलका से हैं सुरेश वाडिकर और कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से लिखा है योगेश गुजराती ने। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हैं फैसल इमाम। ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णो। अनारकली वजार जगराव पंजाब से हैं सुनील पाठक और विनोद लिखा है दिनेश वर्मा ने। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं आफताब अंसारी और मसरूर हसन हैं गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा हैं। कंवर कॉलोनी बढ़वा से जिला खरगोन एमपी से लिखा है प्रवीण श्रीमाली ने। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी हैं और

ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा हैं। श्रीमती रंजू बाई धाकड़ हैं, मालवा रेडियो शो संघ ने बनाया, ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दातार सिंह शेखावत, और लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं भारती बघेल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। फिल्म है लाल दुपट्टा मलमल का।

दिल एक मंदिर। मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गाना है, लीजिए सुनिए। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और भाई साहब क्या हाल है?
3: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया, इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
2: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
3: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और

और भी श्रोता हैं जो हमारे फेसबुक पेज पर इन्होंने लिखा, आप भी से आपसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी पसंद का गाना आप भेजिए। फेसबुक पेज पर आकाशवाणी का ये पेज बना हुआ है। अभी हमारा समय 2 बजे तक है, हम शामिल करेंगे आपके पसंद के गीतों को कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से लिखा है राजेश कुमार वर्मा ने। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा हैं। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन। फूल कोना प्रेमनगर से हैं अरविंद कुमार यादव। और सादुल शहर राजस्थान से हैं राम कुमार रेवाण। नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल। जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हैं विक्रम मालवीय। गांव जाखोद राजस्थान से हैं शंभु दयाल खटक। गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी। बेरड़ी मध्य प्रदेश से लिखा है हुकुम करमकर ने। और बुद्धनगर खंडवा से हैं नदीम भाई। खैल बाजार पानीपत से हैं नरेश कुमार मल्होत्रा नीटू। गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हैं लक्ष्मण राव लोखंडे। कमल सानी पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से हैं संदीप मक्कड़। दीपमाला शिंदे जी हैं।

गाना भेजिए और अपनी पसंद भेजिए। शुकोठी ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश से हैं राकेश पप्पू और यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हैं संदोष खड़ से। नाम की लिस्ट लंबी भेजने के बजाय आप लोग गाने भेजिए, गाने के साथ एक नाम भेजिए अपना और अधिक से अधिक संख्या में हमारे प्रोग्राम से आप जुड़े, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। गांव नथाना पंजाब से लिखा है हरजिंदर शिंदा ने और तरहर गोंडा उत्तर प्रदेश से प्रवीण शुक्ला है। सिटी हरियाणा से नानक खन्ना और खैल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना कुदरत फिल्म से, जिसे पसंद किया है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा।

अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से कार्यक्रम के फेसबुक पेज पे लिखा है माखनलाल वर्मा ने, और जिला किशनगंज बिहार से लिखने वाले हैं रविंद्र मोहनदास। रावर करनाल से विनोद लखनपाल, और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से हैं ममता मारकंडे, संजय मारकंडे। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसामा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव। परभड़ी महाराष्ट्र से हैं रुपेश संघई, और नंदकिशोर घटे हैं बीड़ शहर महाराष्ट्र से। नाभा जिला पटियाला पंजाब से लिखा है सोमदत्त कैरव ने, और कालका से हैं शुभचंद्र बजाज। पंचकूला चंडीगढ़ से हैं राहुल रचित खुराना,

मेरा गोंडा उत्तर प्रदेश से है, कांति शुक्ला, और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा। कराची से जैनेसर गोट हैं। पुणे से लिखा है पंकज वोड़दे ने, और बघेरा दुर्ग से हैं संतोष नामदेव। कोल सिटी बरकाना से हैं अफजाल ताज, और लाहौड़ा जिला बागपत से लिखा है जगमोहन सिंह प्रजापत ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। फिल्म है नाजायज, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गांव हीरावाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा।

0: अपने वाहन को भीड़भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
0: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
1: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
0: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
3: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म थ्री इडियट से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल ने पसंद किया है।

इसी कार्यक्रम में और भी श्रोता शामिल हैं। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर हैं, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा दिवाकर, छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से हैं प्रकाश बोरगांवकर, और संघ तहसील आलोट जिला रतलाम से मध्य प्रदेश से पूजा परिहार, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, और ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बालकरण वर्मा, गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण हैं, और पुखराज बड़गुजर हैं ज्योति नगर नोखा राजस्थान से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म है आज का अर्जुन। और पसंद करने वाले श्रोता हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू।

मलियान सरदना मेरठ से लिखा है अनिल जैन ने, और नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फेसबुक पेज पे लिखा है वेद मिठा ने। माँ बालेश्वरी धाम सांकरा सोमनी से, सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से हैं नारायण लाल साहू। और अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से हैं चंद्रेश गौहर। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श हैं। और गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बरासा हैं। भैरूलाल वाकतरिया धाकड़ हैं उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। सुरेश चौरसिया हैं फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी। और दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी है। मदरसा गेट भावपुर मड़ियाऊ जौनपुर से हैं इरशाद अहमद अंसारी। और संभलपुर कांकेर से फागुराम यादव। शाहजी नगर देलूर देगलूर जिला नादेंड महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गाना। फिल्म है तीन देवियां। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर तीन देवियां फिल्म का ये गाना।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा,

0: फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ DM कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532 21909।

आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं अपनी शादी की सालगिरह जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या धारा रोड बेगमगंज घरैया अयोध्या सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।

0: मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए # झारखंड एसआईआर के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ

0: समाचार कक्ष से मैं कनकलता। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल है। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है, ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती है और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलट फेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए UPI के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो सखी हिना कमर। आप सभी को मेरा नमस्कार। सखियों जरा सोचिए, अंतरिक्ष में मौजूद विशाल चट्टानें आपस में टकरा जाएं और हमारी पृथ्वी पर आकर जमीन के किसी हिस्से पर गिर जाएं तो क्या होगा? जी हां सखियों, अंतरिक्ष में मौजूद इन विशाल चट्टानों को क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड और उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ये चट्टानें हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं, और जब ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं तो इनकी गति हजारों मील प्रति घंटा हो जाती है, और हवा के बहुत अधिक दबाव और घर्षण के कारण चट्टानों की संरचना टूट जाती है और एक विस्फोट होता है। सखियों, विस्फोट के समय आकाश में एक चमकता हुआ आग का गोला दिखाई देता है। विस्फोट से उत्पन्न भारी दबाव वाली हवाएं आसपास के क्षेत्रों में इमारतों की खिड़कियों के शीशे भी तोड़ सकती हैं और लोगों को घायल भी कर सकती हैं। विस्फोट की आवाज किसी बड़े बम या भूकंप के झटके जैसी होती है। सखियों, अंतरिक्ष में हो रही इन घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देने के लिए आज 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। और आज इस दिन को मनाने की खास वजह यही है कि अंतरिक्ष में होने वाली क्षुद्र ग्रहों की टक्कर से होने वाले संभावित खतरों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके और इस तरह की घटनाओं से कैसे बचना है उसके बारे में भी खोज की जा सके। सखियों, आज का ये दिवस आम जनता को अंतरिक्ष खतरों के बारे में और उससे बचने के बारे में भी शिक्षित करता है, और आज का ये खास दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। साथ ही सखियों, आज 30 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जी हां सखियों, दुनिया के किसी भी देश की बात की जाए, उस देश की संसद वहां की जनता का प्रतिनिधि करने वाली संस्था होती है, या यूं कहें कि संसद वो जगह होती है जहां पर हमारे देश का कानून बनता है, हम जनता की समस्याओं और उसके समाधान पर चर्चा होती है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में रहने के हमारे अधिकार क्या हैं, उस देश में रहने वाली जनता का अपने देश के प्रति कर्तव्य क्या है, ये सब संसद में ही तय होता है। संसद से ही तय हुआ कानून जब देश में लागू होता है तो वहां की जनता का सामाजिक, आर्थिक, विकासात्मक परिवर्तन होता है। सखियों, आज का ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस लोगों और समाजों के जीवन में संसदों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। सखियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मई 2018 में प्रस्ताव पारित करके इस दिवस की शुरुआत की थी। हम आम लोगों के जीवन में संसद बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। संसद ही वो जगह है जहां आम नागरिकों के जीवन, उनकी सुरक्षा, उनकी संपत्ति की सुरक्षा, उनकी स्वतंत्रता को नियंत्रित करने वाले कानून बनाए जाते हैं। संसद नागरिकों और सरकार के बीच की सबसे बड़ी कड़ी है। आम जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए से संसद में अपनी समस्याएं, जरूरतें और अपनी उम्मीदें रखती है। आज मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस

इस बात पर भी जोर देता है कि संसद में समाज के हर वर्ग, महिला, पुरुष, युवा, अल्पसंख्यक सभी की समान भागीदारी हो। सखियों, संसदें सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसदों के आपसी सहयोग से गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसी विश्व स्तर की चुनौतियों के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनती हैं। सखियों, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं ये गीत।

0: सखियों, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में वक्त चला है एक वार्ता का, तो आइए सुनते हैं वार्ता। अवध में विलुप्त हो रही संगीत और नृत्य विधाएं, वार्ताकार हैं संगीता आहूजा जी।
1: भारतीय संस्कृति और परंपराएं अब पहले जैसी नहीं रही। हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराएं मानो लुप्त सी हो गई हैं। पहले से अब में भारी परिवर्तन आने वाले समय के साथ हुआ है। बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो या तो पतन की ओर बढ़ गई या फिर पहले से ज्यादा बदल चुकी हैं। जिसमें हम कुछ परंपराओं का जिक्र करें तो उसमें हमारा पहनावा, भोजन, मिट्टी के बर्तन, पत्तों पर भोजन, नीम का दातुन, सुरमा लगाना, तुलसी और पंचामृत का सेवन, संयुक्त परिवार, 16 संस्कार, लोक भाषा, लोक कला, लोक खेल, लोक नृत्य एवं लोक संगीत, इन सब विषयों को लेकर मैंने बहुत सारी बातों का समावेश करने की कोशिश की है, जो कि अब पहले जैसा नहीं रहा। हमारी परंपरा, हमारी विरासत कहीं खो सी गई है, जिसे आज की पीढ़ी तक पहुंचाना अति आवश्यक है। अगर हम सभी विषयों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करके आगे बढ़ें तो हम थोड़ा बहुत आपको अपनी संस्कृति के करीब पहुंचा पाएंगे। यदि हम पहनावे की बात करते हैं तो हम पहले धोती, कुर्ता, लुंगी, लहंगा, अचकन, वक्ष बंदनी, ओढ़नी, अंगोछा, बंडी, खड़ाऊं और खादी के कपड़े पहनते थे, परंतु अब ये सब लुप्त हो गया है। यहाँ तक कि ग्रामीण अंचल में भी यह इक्का दुक्का ही देखने को मिलता है। भोजन में भी बहुत बदलाव आ चुका है। जहाँ पहले मालपुआ, कलाकंद, कंदमूल, सत्तू, खिचड़ा आदि आम बात थी, अब उसकी जगह विदेशी खान पान ने ले ली है। प्राचीन समय में तांबा, पीतल, चांदी, सोने आदि के बर्तन होते हुए भी लोग मिट्टी के बर्तनों में भोजन करना पसंद करते थे, जिसका वर्णन आज भी आयुर्वेद में मिलता है, पर अब उसकी जगह कांच, स्टील आदि बर्तनों ने ले ली। नीम का दातुन, जिसके लिए कहा जाता था कि यह आपकी सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है, पर आज यह सिर्फ ग्रामीण इलाकों में यदा कदा ही देखने को मिलता है। एकल परिवार होने के कारण अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। 16 संस्कारों की प्रथा, रस्में, सब कुछ समाप्ति की ओर है। लोक भाषा बदल गई है, लोक कला लुप्त हो गई है और लोक खेल की जगह अब मोबाइल ने ले ली है। अगर हम चिंतन करते हैं लोक संगीत एवं लोक नृत्य पर, तो वह बस राज्य के उत्सव के दौरान ही देखने को मिलता है। लोक संगीत या शास्त्रीय संगीत भी बहुत कुछ मुगल और पश्चिमी प्रभाव से बदल गया है और कुछ तो पूर्णतः लुप्त हो चला है। लोक संगीत की अगर बात करें तो पहले 12 मासा चैती, कजरी, बिरहा, झोड़ा, झपेली, थड़िया, नाटी, लोहड़ी, बाउल गीत, ऐसे बहुत सारी विधाएं थी जिसके कलाकार हमारे पूरे देश में मिलते थे, पर केवल ग्रामीण अंचलों में इक्का दुक्का ही अब देखने को मिलते हैं। वैदिक ऋचाओं की तरह लोक संगीत व लोकगीत अत्यंत प्राचीन एवं मानवीय संवेदनाओं के सहजतम उद्गान थे। यह लेखनी द्वारा नहीं बल्कि लोक जिह्वा का सहारा लेकर जनमानस के हृदय तक पहुंचने और उसको जीवंत करने के उदाहरण थे। लोकगीत तो प्रकृति के उद्गार कहे जाते हैं। साहित्य की छंदबद्धता और अलंकारों से मुक्त रहकर ये मानवीय संवेदनाओं के संवाहक के रूप में जनमानस तक पहुंचते हैं। लोकगीत का विषय सौंदर्य, सुख दुख, जन्म, झूला, हिंडोला भी हमारी प्रकृति के विभिन्न संस्कारों को दर्शाते हैं। विभिन्न ऋतुओं के गीत 12 मासा, 6 मासा, 4 मासा जैसे एक जादुई प्रभाव ही डालते थे। पावस ऋतु में गाए जाने वाली कजरी, आल्हा आदि इसके प्रमाण है। सामाजिकता को जिंदा रखने

के लिए लुप्त हो रही इन लोक गीतों और लोक संस्कृतियों को सहेजा जाना बहुत ही आवश्यक है। कहा जाता है जिस समाज में लोकगीत नहीं होते वह स्थान रस विहीन होता है। सदियों से दबे कुचले समाज ने, खासकर महिलाओं ने, सामाजिक देश अपमान सहकर परिवार के ताने, जीवन से जुड़ी संघर्षों की आपाधापी को अभिव्यक्ति देने के लिए लोकगीतों का सहारा लिया। लोकगीत किसी काल वर्ष या कवि की रचना नहीं है, अधिकांश लोकगीतों की तो रचयिताओं के नाम भी अज्ञात हैं। महिलाओं ने लोकगीतों को जिंदा रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज वैश्वीकरण की आंधी में हमने अपनी कलाओं को तहस नहस कर दिया है। होली में फगवा, सावन में कजरी, चैत में चैती, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिसमें हमें अपने लोकगीतों और संस्कृतियों का परिचय मिलता है। आज हम बात करेंगे अवध की उस समृद्ध लोक सांस्कृतिक विरासत की जिसे सदियों तक जनमानस को आनंद, संस्कार और सामाजिक एकता का संदेश दिया। लेकिन आज वही विरासत धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। अवध केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि यह भारतीय संस्कृति का जीवंत केंद्र रहा है। अयोध्या, फैसाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में लोकगीत और लोक नृत्यों की समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ का संगीत खेतों में गूंजता था, विवाहों में गाया जाता था, पर्व त्योहारों में नृत्य के साथ प्रस्तुत किया जाता था और सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं लोक संगीत की। जब किसी के घर में बच्चे का जन्म होता था तब महिलाओं द्वारा सोहर गाया जाता था। इन गीतों में केवल खुशी ही नहीं बल्कि समाज की सांस्कृतिक स्मृतियां भी समाहित थी। आज अस्पतालों और आधुनिक जीवन शैली के कारण सोहर की परंपरा बहुत कम होती जा रही है। आइए इसी श्रृंखला में एक सोहर सुनते हैं जी।

पारंपरिक सोहर है। ऐसे ही सावन का महीना आते ही गांव में कजरी और झूला गीतों की धुन सुनाई दे ही जाती है। पेड़ों पर पड़े झूले, महिलाएं समूह में गाती कजरी,

शब्दों से ही आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारी प्रकृति का कैसा सुंदर परिचय दे रहे हैं। आज मोबाइल फोन और डिजिटल मनोरंजन में इन सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जगह ले ली है। ऐसे ही बिरहा और आल्हा वीरता, संघर्ष और लोक इतिहास के जीवंत दस्तावेज हैं। कभी ग्रामीण मेलों और रात्रिकालीन आयोजनों की शान रहे ये गायन अब सीमित मंचों तक सिमट के रह गए हैं। नई पीढ़ी इनके कलाकारों और शैलियों से परिचित भी नहीं है। चैत मास में चैती अपने आप में लोकगीत का एक अलग ही उदाहरण है। चैत राम जी का महीना, क्योंकि राम जी का जन्म चैत मास की नौमी तिथि में हुआ था। आइए अगर हम चैती की बात करें तो चैती की दो लाइनें आपके साथ साझा करती हूँ। अवैधे माय रामे जी जनमल

तालों का परिचय देती ये चैती। ऐसे लोक संगीत व लोक गीतों को बहुत से उदाहरण जो हमारी लोक संस्कृति का परिचय कराते हैं। अगर हम लोक संगीत की बात करें तो बहुत सारे गीत हैं। आइए एक

त्योहारों की रौनक और लोक गीतों की मधुरता गहराई से रची बसी है। यहाँ के लोक नृत्य इस सांस्कृतिक विरासत के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत अंग हैं। अवध के प्रमुख लोक नृत्यों में फरवाही, कजरी, फाग, होली नृत्य, झूला नृत्य, धोबिया नृत्य, लांगुरिया, नौटंकी पर आधारित सुहाग नृत्य, बधावा लोक नृत्य, रामकथा पर आधारित नृत्य अभिनय शामिल है। इन नृत्यों में ताल, लय, वेशभूषा, लोकवाद्य और भाव भंगिमाएं माध्यम से समाज की सामूहिक चेतना और आनंद झलकता है। अवध के लोक नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि लोक इतिहास, परंपरा, सामाजिक एकता, स्त्री भावनाओं की अभिव्यक्ति, किसान जीवन, ऋतु चक्र और धार्मिक आस्था के जीवंत दर्पण है। सावन के फुहारों में कजरी नृत्य, होली के रंगों में फाग नृत्य, विवाहों में सुहाग नृत्य और बरसात के झूलों में झूला नृत्य, प्रत्येक नृत्य समुदायों को एक सूत्र में पिरोता है। आज इन लोक नृत्यों की आवश्यकता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि आधुनिकता के प्रभाव में परंपराएं लुप्त हो रही हैं। युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ना, कलाकारों को रोजगार देना, पर्यटन को बढ़ावा देना और लोक वाद्यों का संरक्षण, इन सभी में लोक नृत्यों की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अवध के लोक नृत्य अपनी सरलता, भाव प्रवणता और प्राकृतिक लय के कारण भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य रत्न है। ये नृत्य न केवल अतीत की स्मृति है बल्कि वर्तमान की पहचान और भविष्य की प्रेरणा भी है। अवध क्षेत्र जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अयोध्या, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और उन्नाव जैसे जनपद भी शामिल हैं, अवध एक प्राचीनतम सांस्कृतिक धरती मानी जाती है। यहाँ की मिट्टी में राम कथा का आदर्श, नवाबों की अदब अदबी, किसान जीवन की सादगी और लोक संस्कृति की अनोखी रौनक रची बसी हुई है। इसी सांस्कृतिक धरोहर का सबसे जीवन और आकर्षक रंग है अवध के लोक नृत्य। ये नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि सामाजिक सामंजस्य, कृषि पर आधारित जीवन शैली, त्योहारों, ऋतुओं और धार्मिक परंपराओं का दर्पण भी है। पीढ़ियों से चले आ रहे लोक नृत्य आज भी ग्रामीण और शहरी दोनों ही समाजों में उत्सव की शान बने हुए हैं। अवध के प्रमुख लोक नृत्यों में फरवाही, बधावा, जोगनी, कैरवा, कजरी, धोबिया, नौटंकी पर आधारित नृत्य, झूला, सावन, लांगुरिया, कजरी गीत आधारित नृत्य, विवाह गीत और होली के फाग नृत्य आदि प्रमुख हैं। इनमें न केवल संगीत की मिठास है बल्कि भाव भंगिमाओं में जीवन का गहरा दर्शन भी छिपा है। विविधता में एकता ही देश की पहचान है। हमारी संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित पहचान है हमारी लोक कला, जिसे लुप्त होने से बचाना हमारी और आपकी दोनों की ही जिम्मेदारी है। आखिर ये परंपराएं समाप्त क्यों हो रही हैं? इसके कई कारण हैं, जैसे आधुनिक मनोरंजन, मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोक संगीत और लोक नृत्यों को पीछे ढकेल दिया है। प्रशिक्षण में कमी, लोक कलाकारों को पर्याप्त मंच और आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। नई नई पीढ़ी में लोक कला के प्रति उदासीनता है। युवा वर्ग आधुनिक संगीत की ओर ज्यादा आकर्षित है। जो कलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती थी वे अब रुकती सी जा रही हैं। यदि हम अभी भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी केवल पुस्तकों और वीडियो में ही इन कलाओं को देखेगी। हमें चाहिए कि विद्यालयों में लोक कला को बढ़ावा दिया जाए। सांस्कृतिक कार्यशालाओं का आयोजन, लोक कलाकारों को सम्मान एवं आर्थिक सहयोग मिले, युवा पीढ़ी को इन परंपराओं से जोड़ा जाए। आज कुछ संस्थाएं निरंतर लोक कला, लोक गीत, लोक नृत्यों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान समय में अयोध्या क्षेत्र में सांस्कृतिक विभाग द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दीपोत्सव, रामोत्सव, काशी तमिल समागम, सावन झूला जैसे अनेक कार्यक्रम जिसमें लगभग अवध के सभी कलाकारों को मौका दिया जाता है अपनी कला, संस्कृति, लोक गीतों, लोक नृत्यों को दिखाने का। इस कड़ी में आकाशवाणी अयोध्या, सूचना विभाग अयोध्या, क्षेत्रीय संस्कृति विभाग अयोध्या भी कलाकारों को अपनी कला बिखेरने का अवसर प्रदान करता है। इसी क्रम में कुछ निजी संस्थाएं भी आगे आई हैं, जो अयोध्या के विकास और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का प्रयास कर लोक कला, लोक संगीत और लोक नृत्यों पर कार्य कर नए कलाकारों को अपनी कला सिखाकर हमारी अवध की विरासत का संरक्षण और संवर्धन का कार्य कर रही हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, हमारी संस्कृति केवल अतीत की विरासत नहीं होती बल्कि भविष्य की पहचान भी होती है। यदि हमारी लोक कलाएं, लोक विरासत समाप्त हो जाएंगी तो हमारी

0: संस्कृति जड़ें भी कमजोर हो जाएंगी। आइए हम सब मिलकर इस अनमोल परंपराओं को संरक्षित करने का संकल्प लें।
1: सखियों, अभी हमने सुनी वार्ता अवध में विलुप्त हो रही संगीत और नृत्य विधाएं। वार्ताकार थी संगीता आहूजा और सखियों कार्यक्रम में आपसे मिलते हैं इस जानकारी के बाद।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303211911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
3: सुनत हूँ सखी, सुनते हूँ कार्यक्रम मंगलामा हो वाला है का खास।
4: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनते हैं। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
4: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
1: सखियों, एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में स्वागत है और आज मंगलवार, आज के दिन हम लेकर आते हैं सौंदर्य टिप्स। और आज सौंदर्य टिप्स में हम बात करेंगे कि सन टैन से बचने के लिए हम क्या क्या घरेलू उपाय अपना सकते हैं। सखियों, उपाय जानने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर सन टैन होता क्या है। सन टैन का मतलब है सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से त्वचा का रंग काला या गहरा सा हो जाता है, जिसे हम सन टैन कहते हैं। सखियों, जब हम धूप में निकलते हैं और हमारी त्वचा सीधे धूप के संपर्क में आती है तो हमारी त्वचा खुद को पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए शरीर में मेलानिन नाम की प्राकृतिक रंग द्रव्य का उत्पादन बढ़ा देती है। इसी एक्स्ट्रा मेलानिन की वजह से हमारी त्वचा का रंग भूरा या सांवला सा हो जाता है। अब बात करते हैं कि सन टैन से बचने के घरेलू उपाय क्या है। सखियों, सबसे आसान उपाय ये है कि एक साफ सूती कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर प्रभावित हिस्से पर 15-20 मिनट के लिए रखें। इससे बहुत आराम मिलता है। साथ ही अगर ताजा एलोवेरा जेल या एलोवेरा का पत्ती काट के एलोवेरा का जो रस होता है उसको निकाल के सनबर्न वाले हिस्से पर लगाया जाए तो बहुत आराम मिलता है। ये त्वचा को ठंडक और नमी देता है। सखियों, सनटैन वाली त्वचा पर खीरे का रस भी लगाया जा सकता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की सूजन और खिंचाव को कम करता है। सखियों, टमाटर का रस टैनिंग को हल्का करता है। इसे सीधे चेहरे पर लगा सकते हैं या इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर स्क्रब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही सखियों, दही और बेसन का फेस पैक भी लगाया जा सकता है। 2 चम्मच दही और 1 चम्मच बेसन को मिलाकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर या सनटैन की जगह पर लगा लें। 20 मिनट के बाद सादे पानी से धो लें। सखियों, कच्चे आलू का रस प्राकृतिक रूप से त्वचा के कालेपन को दूर करता है। और सखियों, धूप में झुलसी त्वचा पर शुद्ध नारियल का तेल लगाने से रैशेज और रुखापन दूर होता है। सखियों, कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया। इसी के साथ अपनी रेडियो सखी हीना कमर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

रोशनी कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 MHz पर। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
0: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
2: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
2: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
2: जी श्रोताओ, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओ, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के

0: नीचे दब गए।
1: जी
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए, इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओ, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है, यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही, पर अजीत जी अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए, वैज्ञानिक रूप से ही कैसे होता है।
0: विवेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही, इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी,
0: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा

0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि पता है, हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,

0: जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा। बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
1: अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
2: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
3: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों है ना कोयल बहन? कू कू।
4: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
5: मेरा भी कुछ यही हाल है।
6: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तुम मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
4: क्या
7: क्या
4: क्या?
6: ऊंचा सब तक कोयल गाए, नीचा सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
2: हाँ हाँ यही करो तुम दोनों।
4: जो आज्ञा महाराज।
3: दम लगा के कू।
5: हईशा।
3: दम लगा के कू।
5: हईशा।
6: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलू उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम रहा पपीहा चुप्पा, बैठा दाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपीहे ऐसे क्यों बैठा है भैये, सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है। काम काम काम।
5: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तुम मुंह तो धोकर आ।
6: काम काम काम। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद।

0: अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
1: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब। अरे वाह जनाब, ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा। छी छी कौन पिएगा उसको, अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
2: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: किसने तो बस रट ही पकड़ ली।
1: भौ, भौ, भौ। अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
0: अरे
1: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ, भौ। कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
0: कहाँ कहाँ कहाँ कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। कहाँ कहाँ शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
2: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
3: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
4: और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं, भयानक गर्मी है ना।
5: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
0: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ,
5: कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
4: क्यों नहीं,

0: मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौए? क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
0: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल? इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
2: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: हाँ सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है?
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपीहे के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी, चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: हाँ, चलो।
3: पिए तुझा पानी, कब आएगी बरखा, कब बरसेगा पानी, कब आएगी बरखा, कब बरसेगा पानी। प्यासा पपीहा मर ना जाए,

0: रंग है, लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ, ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कौआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
0: पानी।
2: अरे
0: पपी है भाई,

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल घोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से प्रसारित केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद. कार्यक्रम है सखी सहेली. और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी. 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था और उन दिनों कुतूहल वश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा. पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी. वो भी झटका अलग से लगा था. साथ ही एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उसको सारे कपड़े निकाल और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर.
1: ये बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, चोट भी बहुत गहरी लग सकती है. एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे. वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं. उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उसे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया. घर में महक आ रही थी और जहाँ फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था. तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था. जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी जैसे नानी मुझे करती है, तो मैं टेडी को कर रही थी. तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया.
0: कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था. एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे. हमने बेल बजा दिया, फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट देगा. यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था. उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना, पंचेस और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े.
1: क्या क्या तो गजब गजब शरारते हैं. और बच्चों की ये जो मासूम शरारतें होती हैं, इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये भी सीखते हैं. तो बस नजर रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा बराबर कर देता था. उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको चाहिए पेचकस से उसने तुरंत खोला ओला और सब अलग. तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
0: बहुत बड़ा इंजीनियर
1: बना. तो भाई ये कुछ
0: उन्हें रोकी टोकी मत कि आपको लगता है कि इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे. साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते हैं ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं, पर उन्हें डांटे ना एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे, क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनकी उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं, तो उन्हें गोद में दीजिए. ऐसा नहीं कि पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते हैं
1: वो लगा सकते हैं
0: या फिर ऐसे
1: कागज लगा दे. एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो लगा दे और कहे कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया. बच्चों की

0: और इस तरह से तारीफ भी करते रहे कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती हैं,
1: बहुत होती
0: तो है। बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
1: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है, कुछ के बाल ही काट देते हैं, कभी कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चूकते हैं बच्चे,
0: छोटे भाई बहनों के काट देते
1: हैं, तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे, उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया, तब उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली जाती। तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना चाहिए।
0: हाँ, मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है, नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
1: गाने में है।
0: हाँ।

सोनाली देखिए शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो

0: होने के कारण रिस्पांस नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया, जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर जान में जान आई।
1: यानी दादाजी नाना जी रहे ना। तो उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है। वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है, अकेलापन नहीं लगता।
1: यानी परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते हैं कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है कहा भी जाता है, तो वही वो बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर वो भी काम आता है,
1: बहुत काम आता है। पर अभी परिस्थितियां थोड़ी अलग होने लगती है। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है। दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्गों के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं। उस जमाने में कहाँ था सोशल मीडिया और टीवी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है, ये
0: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रहे हैं कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं। तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का।
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का, एकल परिवार। और सचमुच है ना, पुराने जमाने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बच्चों को भी सब प्राइवेसी की जरूरत है। तो पुराने जमाने में सब एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे। तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर, पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नजर आ रही है। एक साथ लिखते हैं कि बुजुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता। हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं। सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत जरूरी है जो आजकल बेहद कम हो गया है।
0: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है। आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, एंजॉयिंग अ लॉट। आई लव रेडियो सिंस माय चाइल्डहुड। विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
1: क्या बात है
0: भाई, इस तारीफ के लिए शुक्रिया, विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है बल्कि ये एक नया पड़ाव है, नई यात्रा है। और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा। ये तो सही बात है। एक खबर पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता, बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता है।
1: पर अगर ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं तो ऐसा लगता ना कि अरे वो

0: नहीं करे वो नहीं जा रहे, तो पहल दोनों तरफ से होनी
1: दोनों
0: चाहिए।
1: तरफ से होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
0: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है।
1: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: सुनते हैं गीत।

0: भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर सफर फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है आपकी।
0: हाँ, सही बात है।
1: वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई।
0: सही बात है, बच्चे पोल खोल देते हैं।
1: पोल खोल
0: एक बच्चे ने कहा कि

0: जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं है, जाओ क्या दो अंकल आए, क्या दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब पिताजी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनके

0: घर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी, तो अब क्या बात करें बच्चे से। तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, पहले नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, सब पोल खोल दिया अंदर से। पापा ने सुना, अरे मैं तो वो पानी पानी हो गए छल से।
1: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसका काम का मतलब यही समझाती हम, माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
0: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने वाली।
1: सच में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है, उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखे रुके क्या करें। और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है, जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माए कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
0: सब खा लिया
1: सब खा लिया। तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि बच्चे हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा।
0: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
1: हाँ खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने छोटे बच्चे ने मान लीजिए एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गए, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्चे ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज आएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है
0: जी
1: वो पूरा हो गया।
0: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज खाने की मनाही होती है, और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कहने कि भाई डायबिटीज है खाओ मत मीठा का, अब बहुत ललचाया है हलवाई के यहाँ जाके खा ले, और घर वालों ने किसी ने देख ली तो पानी पानी हो गए। तो ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए है ना तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे वही छोड़ देना है कि ठीक है ना गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
1: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्म पत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से, तो ऑफिस में देते हैं पत्नी वहां घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें स्मृतियां आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं
0: सचमुच, और ये यादें हैं ना ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं आएंगे,
1: फिर से नहीं आएंगे, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे,
0: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, है जट यमला पगला दीवाना।

0: भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई। हम लोगों ने काफी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मजा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिख कर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाजत। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार, वो कहते हैं खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है, दर्द मोती है,

0: कूल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क।
1: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़। जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की है ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: बेखबर दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बान देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
2: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
3: हाँ।
2: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़, और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
3: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
2: तो मुल्क के। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
3: मुल्क का गाना आप सुनाएं, पिया समाए।
2: जी,
3: बहुत अच्छा गाना,
2: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
3: हाँ,
2: कव्वाली।
3: यस यस,
2: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना, और हम आपको बताएं कि विविध भारती
3: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने।
2: जी बिल्कुल। हाँ। पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
3: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
2: जी,
3: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी।
2: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
3: जिक्र किया जाए।
2: दर्ज होती है आज के समय।
3: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है।
2: बिल्कुल।
3: और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
2: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली, और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे, और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चलिए, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
3: जी हाँ, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप।
2: जी
3: बिल्कुल।
2: तो
3: आर्टिकल 15 से।
2: तो कैसे वो गाना बना, बनने की क्या कहानी?
3: उस गाने की कहानी ये है के
2: कोई दिलचस्प बात हो।
3: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ।
2: हाँ।
3: आप यूँ समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
2: पड़ा है इजाजत
3: लौटा दो। हाँ। तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
2: अरे क्या बात है।
3: हाँ, उल्टा मतलब के
2: तो, सामान देना है।
3: हाँ, वो कह रहे लौटा दो।
2: हाँ।
3: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जा।
2: हाँ।
3: ठीक है,
2: संचय करना। हाँ, है यहाँ पर।
3: हाँ। तो उसमें जो गाना है। हाँ। वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मोमेंट्स होते हैं, है ना,

0: हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है, है ना। साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मूवमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
1: अच्छा, क्या बात है कि सारा कुछ एक गाने में आना है।
0: तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो, लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो साझा जो चीजें हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ। तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना इंतजारी।
1: हाँ, तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
0: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी।
1: क्या बात है, वाह।
0: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी।
1: वाह वाह, बहुत सुंदर
0: है ना। तो अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई, ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुम्हारी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना। इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं। तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, कोई नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना
1: जी।
0: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था, जो गुलजार साहब का था ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: सुनते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट भी आ समय, हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उसकी भी उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे और ऐसा, फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलिहाबाद वगैरह में, और
0: अभी गाना लिख दो।
1: हाँ, और हम जो हैं मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक, वो और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और
1: मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी। हाँ,
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसको कोई भी रंग मिलाएंगे तो दूसरा हो जाएगा।
1: हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है।
0: हाँ।
1: और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए,
0: जी, जी, जी।
1: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए
0: इस
1: गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा, मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए जिया में मोरे पिया समय, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है, सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है, सारे समुदाय जो है वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो है एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
0: खुदा है।
1: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक।

0: लेवल में नहीं है। इस तरह के बहुत सारे लगा चुनरी में दाग और फलाना, वो
1: छुपाऊं कैसे,
0: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल, दो अर्थी।
0: हाँ, तो ये दो अर्थी, ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगेंगे,
1: रंग दिखाई पड़ेंगे।
0: हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिल के भई मैं उजली,
1: वाह क्या बात है,
0: सातों से मिलके भाई मैं उजली,
1: वा वा।
0: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
1: क्या बात,
0: पिया समाये जिया में मोरे पिया समाये। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है, कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ।
1: जी जी।
0: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था, और ऐसा वो सटीक आया है ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
1: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, सब एकजुटता का संदेश है, और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा,
1: हाँ,
0: एम एम करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना, इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं।
1: मतलब क्योंकि आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंच गए,
0: दस्तक दे रहे हैं और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट
1: उन्होंने डायरेक्ट की थी और ये गाना जो है एम एम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे पसंदीदा कंपोजर हैं वो और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवां हो गया। जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवां हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई।
0: क्या बात है।
1: हाँ, वो जब ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर।
0: हाँ, जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना, कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी। मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई। उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई।

0: थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
1: जी।
0: तो उसमें गाना था वो के ने गाया था वो ऐ बेखबर ऐ बेखबर
1: जी जी हाँ।
0: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ
1: जी। जी तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
0: आई बेखबर
1: सुनते हैं हाँ। ये गाना

0: रूप कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में?
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है, है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी, जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था
0: जी, जी।
1: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने वो गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी जी,
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी जी,
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
0: दर्ज है।
1: हाँ, और 400-500 गाने होंगे।
0: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
1: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगने
0: जी,
1: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
0: जी जी।
1: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे बहुत अच्छे गाने।
0: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था?
1: वो तेरा नाम था, बिल्कुल।
0: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं, लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
1: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
0: अच्छा,
1: तब मैं सूरत में रहता था
0: जी जी,
1: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
0: अच्छा।
1: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई, और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे

0: उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी, जुल्मी फिल्म थी अक्षय कुमार
1: जी, जी, जी।
0: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना,
1: वहाँ तनवीर खान भी के
0: तो मैं वहीं आ रहा हूँ तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब, तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया
1: जी।
0: और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए, तो तनवीर खान साहब की नजर उस किताब पर पड़ी
1: जी।
0: और उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
1: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
0: सर के नीचे तेरी हथेली है।
1: ओ क्या बात है।
0: ठीक है। तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊंगा, आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे, इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
1: ओ, क्या बात है।
0: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे
1: जी जी,
0: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में
1: जी।
0: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी
1: जी।
0: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था, फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुकू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊंगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन, समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गजल थी कतील सिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है।
0: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया था।
1: ओ अच्छा, क्या बात है भाई, अच्छी दिलचस्प कहानी।
0: हाँ मतलब पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील सिफाई साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना
1: जी,
0: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मदहोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदहोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि

0: यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था, बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया। तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कई वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी
1: जी।
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जो राइटिंग है और वो गाना इतना, मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे,
0: अरे ये गाना तो मेरा था तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया। हाँ तो ये तो गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको। सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
1: क्या बात,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है,
1: बहुत खूब।
0: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: मधोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे, मधोशी है मधोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत ज़रूरी सी बात है और आपकी करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, ख़ास बात है, अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़्में हैं जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं
0: जी।
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा, मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी है, उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसकी कुर्बानी ने,
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी,
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज़में लिखी जाएं। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायण लिखी गई है, तुलसीदास की जी, हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे,
0: उर्मिला सखी वे मुझसे कहकर जाते, बहुत बढ़िया।
1: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है, मैंने एक नया रास्ता निकाला पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक जीता गया और लिखता गया, इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था मैं, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा

जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों है उसमें, तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल उसमें वो वनवास आता था वो, तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया तब मुझे मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है, अगर जंगल पर किताब है, रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है।

0: किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया।
1: जी जी।
0: वहां पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे।
1: हाँ।
0: जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका। उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है
1: जी।
0: और किस तरह से मतलब हिंदू माइथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
1: क्या बात है।
0: पिछले 3 साल से लगातार, और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
1: क्या बात है।
0: तो हाँ, बहुत शुक्रिया
1: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है, और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था जहां अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव हैं, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है। आपके ही अल्फाज हैं, आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
0: मैं यही कहूंगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत जरूरी है, और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
1: कुछ शायर में आप एक शायर से हम उम्मीद करते हैं शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
0: जी,
1: कोई अशार।
0: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ, और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है, ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
1: क्या बात है।
0: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, वो आप आगे बढ़ें। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर।
1: क्या बात है।
0: सांपों को मैंने रहने दिया
1: उनके हाल पर।
0: उनके हाल पर मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: ठीक है, मैंने उसे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए, ज्ञान जो है ना
1: जी,
0: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तख्लीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: क्या बात है। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। वाह।
0: ये सीख है हम सबके लिए। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
1: जी।
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है। वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगु जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। नमस्कार।
2: जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और

आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये अयोध्या केंद्र है 101.9 MHz FM बैंड पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज है थॉटफुल ट्यूसडे और मैं आपकी दोस्त मंजले सिंह लेकर आ चुकी हूँ आपका पसंदीदा युववाणी कार्यक्रम। तो चलिए पहले जान लेते हैं आज के कार्यक्रम में क्या कुछ है खास। पहले चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय शुक्र ग्रह दिवस की, उसके बाद बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय

संसदीय दिवस की। फिर है आज भारतीय इतिहास सेगमेंट, उसमें बात करेंगे हम दक्षिण पश्चिमी गंग राजवंश की। उसके बाद होगा आपका पसंदीदा चक्रव्यूह। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा। दोस्तों आज तारीख है 30 जून और आज पूरी दुनिया मना रही है अंतर्राष्ट्रीय शुद्र ग्रह दिवस यानी इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। आज हम बात करेंगे इस बारे में कि अंतरिक्ष में जो आवारा से मुसाफिर घूम रहे हैं और हमारे सिर पर मंडरा रहे हैं, इन्हीं की आज होगी बात। और अब आप सोचेंगे कि आज ही के दिन हम एस्ट्रॉइड डे क्यों मना रहे हैं। इसके पीछे एक बेहद खौफनाक और सच्ची कहानी है। आज से ठीक 118 साल पीछे यानी 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया के जंगलों में एक नदी है तुंगुस्का। इस तुंगुस्का नदी में सुबह सुबह आसमान से एक बहुत बड़ा आग का गोला आ गिरा। वो धमाका इतना तेज था कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। सोचिए, पल भर में 8 करोड़ पेड़ जलकर राख हो गए, हजारों वर्ग किलोमीटर का जंगल तबाह हो गया। गनीमत ये थी दोस्तों कि वो सिर्फ एक घना जंगल था, कोई शहर नहीं था। इसी तुंगुस्का घटना की याद में संयुक्त राष्ट्र ने तय किया कि हर 30 जून को हम दुनिया को जागरूक करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी किसी तबाही से अपनी धरती को बचा सके। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये एस्ट्रॉइड होता क्या है। तो जब हमारा सौरमंडल बन रहा था तो ग्रहों के बनने के बाद कुछ मलबे, कुछ पत्थर और धातु के टुकड़े बच गए थे। ये ना ग्रह बन पाए ना उपग्रह। ये ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच की बेल्ट में घूमते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये हमारी अपनी लेन छोड़ के हमारी लेन में आ जाते हैं यानी हमारी पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। तो बात ये है कि अगर फिर से कोई एस्ट्रॉइड आए तो हमारी तैयारी क्या है। तो हमारे वैज्ञानिक एस्ट्रॉइड की दिशा बदलने का प्रयास कर रहे हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले डार्ट मिशन लॉन्च किया था जहां उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट को जानबूझकर एक एस्ट्रॉइड से टकराया और उसका रास्ता बदल दिया। यानी अगर कोई खतरा भविष्य में हमारी तरफ आएगा तो हम उसे अंतरिक्ष में ही वापस घुमा देंगे। तो दोस्तों आज रात जब आप अपनी छत पर जाएं या खिड़की से बाहर देखें तो सितारों को देखते हुए उस आसमान की विशालता को महसूस कीजिएगा। हमारा ब्रह्मांड जितना खूबसूरत है उतने ही रहस्यों से भरा है। तो दोस्तों यहाँ खत्म हुई हमारी चर्चा जहाँ हमने बात की इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे की। चलिए अब आगे बात करते हैं और आज ही के दिन हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। अब आप सोचेंगे कि ये संसद तो नेताओं की जगह है, हमारे लिए ये दिन खास क्यों है। तो बात कुछ ऐसी है कि सन 1889 में आज ही के दिन यानी 30 जून को ही इंटर संसदीय संघ यानी IPU की स्थापना हुई थी और इसी दिन को याद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की। और दोस्तों संसद सिर्फ एक बड़ी आलीशान इमारत नहीं होती है जहां बहस होती है और कानून बनते हैं। संसद असल में हमारी, आपकी और हम सब की आवाज होती है। ये लोकतंत्र का वो मंदिर है जहां देश के आखिरी इंसान की परेशानी को भी कानून के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाती है। सोचिए अगर देश में संसद ना हो तो क्या होगा। राजा महाराजाओं का दौर याद है, जो राजा कह देते थे वही कानून हो जाता था, कोई सवाल नहीं कोई जवाब नहीं। लेकिन आज हमारे पास वोट की ताकत है, हम अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजते हैं ताकि वो हमारे हक की लड़ाई लड़ सके। संसद का मजबूत होना मतलब आम जनता का मजबूत होना। इस साल इस दिवस का बहुत बड़ा फोकस है हमारी संसदों में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का, क्योंकि जब तक नए विचार और आधी आबादी की आवाज वहां तक नहीं गूंजेगी तब तक देश पूरी रफ्तार से कैसे भागेगा। तो दोस्तों राजनीति और संसद की बहसों को बोरिंग समझकर चैनल मत बदलिए, बल्कि उसमें दिलचस्पी लीजिए क्योंकि वही हमारा भविष्य है। तो दोस्तों यहाँ खत्म हुई हमारी चर्चा जहाँ हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस पर। तो चलिए मूड को बनाते हैं थोड़ा सा लाइट और सुन लेते हैं गीत।

इस प्यारे से गाने के बाद चलिए अब वापस से चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में। और हमारा अगला सेगमेंट है भारतीय इतिहास। दोस्तों, जब भी हम दक्षिण भारत के सुनहरे इतिहास की बात करते हैं तो जुबां पे चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य जैसे नाम तुरंत आ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको भारतीय इतिहास से सेगमेंट में टाइम मशीन में बिठा कर ले चल रहे हैं चौथी शताब्दी में, एक ऐसे छिपे हुए सुनहरे पन्ने की ओर जिसने लगभग 700 सालों तक आज के कर्नाटक और तमिलनाडु के हिस्से पर राज किया। एक ऐसा राजवंश जिसने कला, साहित्य और शासन व्यवस्था की नई गाथा लिखी। जी हाँ, आज की हमारी कहानी होने वाली है दक्षिण पश्चिमी गंग राजवंश की। तो दोस्तों, गंग वंश की शुरुआत होती है साल 350 ईस्वी के आसपास से, जब उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का बोलबाला था, वहीं दक्षिण में पल्लव राजवंश कमजोर पड़ रहा था। इसी राजनीतिक

उथल-पुथल के बीच दो भाई सामने आए, दिड्डिग और कोंगनी वर्मा माधव। कहा जाता है कि महान जैन आचार्य सिंह नंदी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने इस साम्राज्य की नींव रखी। इन दोनों भाइयों ने मिलकर गंगवाड़ी नाम के क्षेत्र पर अधिकार जमाया। शुरुआत में इन्होंने आज के कोलार यानी जो कर्नाटक में स्थित है कोलार जगह, इसे अपनी राजधानी बनाया, लेकिन बाद में इसे कावेरी नदी के किनारे तलाकाडू में स्थानांतरित कर दिया गया। इनका प्रतीक चिन्ह था मदगज यानी एक विशाल हाथी, जो इनकी शक्ति का प्रतीक था। और कोंगनी वर्मा माधव को धर्म महाधिराज की उपाधि भी मिली थी। कोंगनी वर्मा माधव के बाद माधव द्वितीय 370 से 390 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। ये ना सिर्फ कुशल योद्धा थे बल्कि नीति शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने दत्तक सूत्र पर एक महत्वपूर्ण टीका भी लिखा था। 390 ईस्वी में हरि वर्मा आए, जिनका शासनकाल चला 410 ईस्वी तक। इसके बाद समय में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार को देखते हुए राजधानी को कोलार से तलकांडू शिफ्ट कर दिया गया। 410 ईस्वी में सत्ता विष्णु गोप के हाथों में आई, जो कि 430 ईस्वी तक ही रही। धार्मिक रूप से विष्णु गोप का काल बेहद दिलचस्प था, क्योंकि जैन धर्म से प्रभावित होने के बावजूद विष्णु गोप ने नारायण या वैष्णव मत की भक्ति को अपनाया। पांचवी शताब्दी के मध्य में गद्दी पर बैठे माधव तृतीय 440 ईस्वी से 469 ईस्वी तक। इसके बाद इन्होंने जो कादम्ब राजवंश है इसके साथ में जो वैवाहिक संबंध होते हैं, वैवाहिक संबंध बनाकर अपनी जो राजनीतिक स्थिति है उसको मजबूत कर लिया। छठी शताब्दी आते आते गंग साम्राज्य अपनी किशोरावस्था से निकलकर एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ। 469 ईस्वी में आए राजा अविनीत, जिनका शासनकाल 529 ईस्वी तक चला। अविनीत एक महान योद्धा थे। उन्होंने पल्लवों और चालुक्यों को कड़ी टक्कर दी थी। और हाँ, खास बात यह है कि उन्होंने जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों को ही खुलकर दान दिया था। दोस्तों, अब इस टाइमलाइन के उस राजा की बात करते हैं जो इतिहास में काफी महान हुए, राजा दुर्विनीत, जिनका शासनकाल 529 से 569 ईस्वी तक चला, यानी पूरे 50 साल शासन किया इन्होंने। दुर्विनीत सिर्फ एक आक्रामक राजा नहीं थे जिन्होंने पल्लवों से पुन्नाड का इलाका छीना, बल्कि वो कन्नड़ और संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। उन्होंने बृहत कथा का संस्कृत में अनुवाद किया। उनके दरबार में महान कवि भारावी रहा करते थे। दुर्विनीत के समय गंग राजवंश की जो सीमाएं थी वो काफी ऊपर तक पहुंची, साथ ही प्रतिष्ठा भी अपने चरम पे पहुंच गई थी। फिर कुछ साल दुर्विनीत के काल के बाद छोटे मोटे संघर्ष आते रहे। फिर आया साल 726 ईस्वी का। 726 ईस्वी में इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक श्री पुरुष आए, जिनका शासनकाल 788 ईस्वी तक चला। इनके शासनकाल को गंग साम्राज्य का वैभव काल कहा जाता है। उन्होंने राष्ट्रकूटों के जो राजा थे, राजा कृष्ण प्रथम, इनको युद्ध में पराजित किया। श्री पुरुष इतने समृद्ध थे कि उनके समय में राज्य को श्री राज्य कहा जाने लग गया। श्री का मतलब लक्ष्मी, यानी इतनी संपदा थी और इतनी समृद्धि थी इनके राज्य में। उन्होंने गज शास्त्र नाम की एक बेहद महत्वपूर्ण किताब भी लिखी थी। श्री पुरुष के बाद गंग राजाओं को राष्ट्रकूटों के भारी आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस दौर में शिवमार द्वितीय, जिनका शासनकाल 788 ईस्वी से 816 ईस्वी तक चला, इसके बाद आए शिवमार द्वितीय। शिवमार द्वितीय को तो राष्ट्रकूटों ने जेल में डाल दिया था, पर गंगवंशियों ने हार नहीं मानी। राजमल्ल प्रथम 816 में आए और इन्होंने 843 तक शासन किया। राजमल प्रथम की खास बात यह थी कि इन्होंने कूटनीति और वीरता से साम्राज्य को फिर से आजाद कराया। अब सीधे चलते हैं साल 974 ईस्वी में, जहां गद्दी पर बैठते हैं राजमल चतुर्थ। इतिहास इन्हें इसलिए याद रखता है क्योंकि इनके महान और वफादार मंत्री चामुंड राय ने साल 988 ईस्वी में श्रवण बेल

0: कोला में विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की 57 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण करवाया था। हर महान साम्राज्य की तरह इसका भी अंत करीब आ गया। अंतिम प्रमुख शासक राजमल पंचम के समय दक्षिण के सबसे खूंखार और शक्तिशाली साम्राज्य यानी चोल राजवंश की नजर इस इलाके पे पड़ी। साल 1004 ईस्वी में महान चोल राजा राजराज चोल प्रथम ने गंगों की राजधानी तलाकांडू पर कब्जा कर लिया और इस तरह करीब 700 साल के इस गौरवशाली राजवंश का पूर्ण विराम हो गया। दोस्तों, गंग राजाओं की जो शासन व्यवस्था है इसकी बात करें तो ये बेहद सुदृढ़ थी। इनके साम्राज्य को राष्ट्र, विशाया और नाडू में बांटा गया था। सबसे खास बात आपको पता है, गांवों का जो प्रशासन था वो स्थानीय लोगों के हाथ में था, जिसे गामुंडा संभालते थे। तो कहीं ना कहीं ये हमें दिखाता है कि लोकतंत्र तब भी था। और अब बात करें अर्थव्यवस्था की, तो कावेरी नदी के किनारे होने के कारण यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ थी। कृषि इनका मुख्य आधार थी। रागी, चावल और गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। दोस्तों, समाज में वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन महिलाओं को बहुत सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त थी। धार्मिक रूप से गंग राजा उदार और सहिष्णु थे। हालांकि वे खुद हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन जैन धर्म को इस काल में अभूतपूर्व बढ़ावा मिला। अब बात करें इनकी कला और वास्तुकला की, तो गोमतेश्वर प्रतिमा के अलावा तलाकांडू का पातालेश्वर मंदिर, मदिकेरी का कदम्ब हल्ली जैन और कोलार का कोलम्मा मंदिर भी इन्होंने बनवाया। इनकी वास्तुकला पल्लव और चालुक्य शैली का बेजोड़ मेल है। दोस्तों, 11वीं शताब्दी के आते आते चोल राजवंश के आक्रमणों के कारण इस महान गंग राजवंश का अंत हो गया, लेकिन अपनी कला, शासन और गोमतेश्वर जैसे अमर धरोहरों के जरिए वे इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, यहाँ खत्म हुआ हमारा सेगमेंट भारतीय इतिहास से, जिसमें हमने बात की दक्षिण पश्चिमी गंग राजवंश की, और वक्त हो चला इस छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,02,000 बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मुझे 9,00,000 मांगा दे रे ओ सैया दीवाने।
8: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
7: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
8: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
9: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
8: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
9: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
0: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
8: ayodhyaakashwani

0: shubhavani@gmail.com
1: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
2: ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए वक्त हो चला है आपके पसंदीदा सेगमेंट चक्रव्यूह का, जिसमें होते हैं हमारे सवाल और आपके जवाब। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको चक्रव्यूह क्रमांक 610 के प्रश्न और उनके उत्तर जो हमने आपसे पूछे थे। दोस्तों पहला प्रश्न था, गदर पार्टी द्वारा सैन फ्रांसिस्को से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले उस मुख्य समाचार पत्र का नाम क्या था जिसने गदर आंदोलन के क्रांतिकारी संदेशों को दुनिया भर में फैलाया, जिसका सही उत्तर है गदर समाचार पत्र। हमारा दूसरा प्रश्न था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिंग 2026 का आयोजन उज्बेकिस्तान के किस क्षेत्र यानी रीजन में हुआ था, जिसका सही उत्तर है नामांगन रीजन। हमारा तीसरा प्रश्न आपसे था, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में ULPGM-V3 यानी मानव रहित हवाई लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण कुरनूल में किया गया और अब आपको बताना है कि कुरनूल भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। हमारा चौथा प्रश्न आपसे था कि जनवरी 2026 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल यानी मेन सिंगल का खिताब जीतकर किस खिलाड़ी ने इतिहास रचा, जिसका सही उत्तर है कार्लोस अल्कराज। हमारा पांचवा प्रश्न आपसे था, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया लिटरेसी मिशन 2026 लॉन्च किया, जिसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय। हमारा छठा प्रश्न आपसे था, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी रिवर आइलैंड कौन सा है, जो अपनी अनूठी संस्कृति और पर्यावरण के लिए जाना जाता है, जिसका सही उत्तर है माजुली आइलैंड। हमारा सातवां प्रश्न था, RBI यानी रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं, जिससे मुद्रा बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है, इसका सही उत्तर है रेपो रेट। और हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने हमारे चक्रव्यूह को भेज लिया, तो चलिए उनके नाम भी जान लेते हैं। दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन गिरी, अगले दोस्त हमारे भट्टीपुरा महोबा से थे कृष्ण कुमार गुप्ता और उनके साथी, अगले दोस्त परसा टोला छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया और उनके साथी, डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया और उनके साथियों ने भी बिल्कुल सही जवाब हमें भेजे। उसके बाद छत्तीसगढ़ से ही आया हमारे पास मेल बलकरण वर्मा और अंजनी ज्योति वर्मा और उनके साथियों का, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा और उनके साथियों का मेल आया, जवाहरनगर दुर्ग से RC कामड़े और करुणा मीना कामड़े, इन्होंने भी आंसर्स बिल्कुल सही दिए हमें, बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद वीमा और वैभवी के भी आंसर्स बिल्कुल सही थे, कोयलारी छत्तीसगढ़ से भी मेल आया कैलाश चंद्राकर और उनके साथियों का, और हमारे दोस्त जिनका बिल्कुल सही आंसर था वो थे पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश पूनम और ज्योति, अगले दोस्त पथरिया भरेवा से थे चंदूलाल सिंगरौल और उनके साथ ही अडार नाथघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा चांदनी राहुल गोपी का भी बिल्कुल सही जवाब था, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा का भी जवाब बिल्कुल सही था, यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से का भी मेल हमारे पास पहुंचा जिन्होंने बहुत सही जवाब दिए, उसके बाद संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति और ओजस्वी का मेल आया, साथ ही मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत और सरिता जी का आया मेल, और हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण और उनके साथियों का मेल आया, साथ ही गुड़ाराज से मनोज और चित्ररेखा जी का भी आया हमारे पास मेल, साथ ही बिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन और उनके साथियों ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, और हमारे कुछ दोस्त थे जिन्होंने हमें लिख के भेजा बट उनके आंसर्स एक आधे गलत रह गए, तो वो थे खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान और उनके साथियों का जवाब एक गलत हो गया, साथ ही नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद चंद्रकांत मयंक और पुष्पांजलि थे, और हमारे दोस्त जिनका आंसर आया तो हमारे पास यानी जिनका मेल आया वो थे पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे वीणा और उनके साथी। दोस्तों आप जल्दी से पेन पेपर लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं अब चक्रव्यूह क्रमांक 611 के प्रश्न और इनके उत्तर आपको हमें लिख के भेज देने हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, सिलीसेर झील जो कि भारत की 96th वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि है, ये किस राज्य में स्थित है। प्रश्न दोबारा से सुनिए, सिलीसेर झील जो कि भारत की 96th वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि है, ये किस राज्य में स्थित है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सदा तंसीक किन दो देशों के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। प्रश्न फिर से सुनिए, सदा तंसीक किन दो देशों के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। हमारा

0: दूसरा प्रश्न है, सराय केला छाऊ जो कि एक विश्व प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है? प्रश्न फिर से सुनिए, सराय केला छाऊ जो कि एक विश्व प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है? हमारा चौथा प्रश्न है, श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किस राजवंश के शासकों द्वारा बनवाई गई? प्रश्न फिर से सुनिए, श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किस राजवंश के शासकों द्वारा बनवाई गई? हमारा पांचवा प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्ञात क्षुद्रग्रह यानी एस्ट्रॉइड कौन सा है? हमारा पांचवा प्रश्न आप फिर से सुन लीजिए, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्ञात क्षुद्रग्रह यानी एस्ट्रॉइड कौन सा है? हमारा छठा प्रश्न है, संसद का वह कौन सा अधिकारी है जो किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है? प्रश्न फिर से सुनिए, संसद का वह कौन सा अधिकारी है जो कि किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है? हमारा सातवां प्रश्न आपसे है, अल्प्स पर्वत पर चलने वाली गर्म और शुष्क लोकल विंड्स का क्या नाम है? प्रश्न फिर से सुनिए, अल्प्स पर्वत पर चलने वाली गर्म और शुष्क लोकल विंड का क्या नाम है? तो दोस्तों ये थे हमारे सातों प्रश्न और उम्मीद है आपने इन्हें कर लिया होगा नोट, और आप हमें आंसर लिख के भेज देंगे 6 जुलाई से पहले, और आपका जो अगला चक्रव्यूह क्रमांक होगा वो होगा 612 और 7 जुलाई को हमारा अगला चक्रव्यूह प्रसारण भी होगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पहले बता दे कल के कार्यक्रम में क्या कुछ है खास। कल चर्चा होगी वन महोत्सव सप्ताह की, व्यक्ति विशेष में है डॉक्टर विधान चंद्र राय, उसके बाद होगा खेल संसार। तो इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त मंजली सिंह को इजाजत, नमस्कार।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
3: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी का। ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
2: सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: कार्यक्रम लोक संगीत के आरंभ में आई सुनते हैं किरण पांडे और सखी उस्वर में ये वर्षा गीत।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: राम कृपाल पांडे और साथियों के स्वर में आई सुनते हैं ये पर्यावरण गीत।

0: जी हाँ, यही तो है हम सब का आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल, आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अबनियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित। यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
4: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
4: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियावा, अयोध्या। कॉल करें 63-86-90-70-06।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग।

0: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डी फार्म, बी फार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
1: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
2: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है।

आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। शाम के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में इसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट

0: विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Addressing the media, Chief Electoral Officer of Delhi Ashok Kumar said that claims and objections can be filed from the 5th of August to the 4th of September. The final electoral roll will be published on the 7th of October. General Dheeraj Seth today took charge as the 31st Chief of the Army Staff from General Upendra Dwivedi, who superannuated after more than four decades of distinguished service to the nation. General Seth is an alumnus of the National Defence Academy, Pune, and was commissioned into the Armoured Corps in December 1986. He has a distinguished military career spanning nearly four decades. India has reaffirmed its strong support for the Financial Action Task Force, FATF, describing it as an indispensable pillar of the global fight against terrorism, financing and money laundering. The statement came after Pakistan criticized the task force following the neighboring country's placement on the organization's grey list for increased monitoring. Speaking at a UN event on the sidelines of the Counter-Terrorism Week, India's permanent representative to the UN, P. Harish, said attempts to question FATF's credibility reflect fear of scrutiny rather than genuine concerns. On the occasion of Hul Divas today, Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to Sidho Kanhu, Chand Bhairav, Phulo Jano and all the brave tribal warriors who stood firm against the injustice of foreign rule. In a social media post, Mr. Modi said that Hul Divas is a powerful symbol of the extraordinary courage and unwavering spirit of tribal communities who laid down their lives for their motherland. Benchmark domestic equity indices ended the final trading session of the quarter around 4.3% lower today. The Sensex fell 250 points to close at 76,479, while the Nifty lost 81 points to settle at 23,866. However, the broader market on the National Stock Exchange ended in a positive territory. In the FIFA World Cup, Morocco and Paraguay have advanced to the round of 16. Morocco defeated Netherlands 3-2 on penalties after a thrilling 1-1 draw in Guadalupe, Mexico. Tonight, Ivory Coast will take on Norway in Texas, United States. The match is scheduled to begin at 10:30 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या की सूचना अनुसार रेखा देवी निवासी बारी गांव थाना बरसठी जनपद जौनपुर से सूचित करती हैं कि इनका पुत्र रोहन दिनांक 3 जून 2026 को राम मंदिर निकास द्वार अयोध्या से कहीं लापता हो गया है रोहन का होलिया इस प्रकार है आयु लगभग 14 वर्ष रंग सांवला इकहरा मजबूत बदन लापता होने के समय इन्होंने सफेद रंग की टी शर्ट पहन रखी थी रोहन के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी होने पर आप अपने निकट की पुलिस चौकी थाना कोतवाली अथवा कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचित कर सकते हैं आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम सुहानी
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22
3: DLED, BTC, DHP, D-Farm, B-Farm और GNM जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838
1: आपका हमनवा आपका मेजबान आपका हमदम आपका दोस्त हाजिर है कार्यक्रम शाम सुहानी लेकर दोस्तों हम सभी भाग रहे हैं अपने अपने लक्ष्य की ओर और रुकना नहीं है रुक गए तो पीछे हो जाने का खतरा पैसा है प्रतिभा है प्रसिद्धि है लेकिन घर में खुशियों का आने का कोई दरवाजा नहीं है

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोकरंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोकरंग कार्यक्रम।
1: दोस्तों, हमें अक्सर बड़ी शिकायतें रहती हैं, जिंदगी ने ये नहीं दिया, जिंदगी ने वो नहीं दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिंदगी ने हमें क्या क्या दिया? बस जिस रोज से आप इस नजरिए से सोचना शुरू कर देंगे, आपके चेहरे पर खुशी आ जाएगी जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। छोटी छोटी खुशियां जिंदगी को कब खुशगवार बना देंगी आपको पता भी नहीं चलेगा।

0: समय पर बुवाई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी, आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। शाम के 6:20 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

0: समयः निर्धारितः अस्ति. अन्तिमा मतदातृसूची अक्टूबर मासस्य सप्तदिनाङ्के प्रकाशिता भविष्यति. कर्णाटकराज्ये अस्मिन् अभियाने राज्यस्य 31 निर्वाचनकार्यालयैः सह सम्बद्धाः 950,000+ BLO अधिकारिणः नियुक्ताः सन्ति. मेघालयराज्ये च ईस्ट खासी हिल्स जनपदस्य उपायुक्तः अभिलाष वरणवालः सूचितवान् यत् BLO अधिकारिणः जनपदे स्थितेषु सर्वेषु 21,000 मतदानकेन्द्रेषु गत्वा तेभ्यः मतदातृभ्यः प्रपत्राणि वितरिष्यन्ति. भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन आगामी द्विदिवसेषु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवाषु अतिवृष्टेः कृते नारंगी वर्णीया संचेतना प्रकटिता. एतादृशी एव स्थितिः अद्य सिक्किम, असम, मेघालय, केरल, माहे उपहिमालयी, पश्चिम बंगालस्य च भागेषु संभाव्यन्ते. अपरपक्षे विभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ इत्यादिषु राज्येषु उष्ण तरंगस्य पूर्वानुमानं प्रकटितम्. विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः न्यगादीत् यत् भारतेन 26+ देशैः सह 28 प्रवासन गतिशीलता सहभागिता सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि विहितानि. तेन अवैध प्रवासं शोषणात्मक प्रथाः कपटपूर्त मध्यस्थतां च प्रतिरोद्धुं राष्ट्राणां सामूहिक उत्तरदायित्वं प्रति विशेष रूपेण उपादिष्टम्. हूल दिवसावसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेश शासनस्य अन्यायस्य विरुद्धं दृढतया समुपस्थितेभ्यः सिंधो काहू, चंद भैरव, फूलो झानू इत्यादिभ्यः सहैव सर्वेभ्यः वीर जनजातीय जनेभ्यः भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समर्पितवान्. फीफा विश्व कप स्पर्धा मालिकायां मोरक्को पैराग्वे देशौ राउंड ऑफ 16 चरणे स्वस्थानं सुरक्षितवन्तौ. मैक्सिको देशस्य ग्वाडालूप नगरे आयोजिते रमणीय द्वन्द्वे मोरक्को दलेन नीदरलैंड दलं 3-2 इत्यंकैः पराजितम्. अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य टेक्सास प्रान्ते आइवरी कोस्ट तथा नॉर्वे इत्यनयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति. इति वार्ताः.
1: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर. कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से अगला कार्यक्रम.

0: have finally brought us to the first semi-final game that is all set to happen between West Indies and Australia of the ongoing ICC Women's T20 World Cup, all set to be held at the Oval today. In the next 1 minute, we shall be also witnessing the toss, which is all set to happen. But over here, I'm joined by my dear friend and colleague for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit. Namaskar.
1: Namaskar. Good evening, Sakshi. And here, before semi-final, we are with us at Akashwani Delhi Studios, Asha Rawat. Namaskar, former India batter.
2: नमस्कार.
1: राकेश राव हमारे साथ हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. गुड इवनिंग राकेश.
3: वेरी गुड इवनिंग.
1: और साथ ही बीसीसीआई कोच हमारे साथ हैं, रविंदर सिंह जी. नमस्ते. आशा, टॉस होने वाला है 30 सेकंड में. क्या लगता है, हेली मैथ्यूज और सोफी मेलोन्यू, जब टॉस अगर कोई जीतता है तो क्या चॉइस करेंगी?
2: वो बैटिंग के लिए पहले जाएंगे, क्योंकि ये जो पिच है ना, और एक जो प्रेशर होता है, वो भी सेमीफाइनल का प्रेशर, तो कोई भी वो प्रेशर को, वो नेचुरल होता ही है, सबको आता है, तो जो भी जाएगा पहले बैटिंग के लिए ही जाएगा.
1: राकेश,
3: कंप्लीटली सेम चीज है, क्योंकि थोड़ा बहुत हरा जरूर है, लेकिन इट्स फुल ऑफ रन्स.
1: रविंद्र जी,
4: आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड बैटिंग में 10 बार जो लिया उन्होंने, मुझे भी लगता है शायद दूसरा चेज करेंगे.
1: चलिए सीधा कैनिंगटन ओवल के मैदान पे चलते हैं, लंदन, जहां पर

0: हो रहा है और दोनों कप्तान ऑस्ट्रेलिया की सोफी मोलिन्यू और वेस्ट इंडीज की कप्तान हीली मैथ्यूज बिल्कुल तैयार हैं।
1: Finals here at the Oval, and we have two of the most skillful and entertaining teams in this ICC Women's T20 World Cup. It's the West Indies up against Australia. I've got the captains next to me. G.S. Lakhmi is match referee overseeing the coin toss. Sophie Molyneux has the coin. Hayley Matthews will call.
2: Tails.
3: Tails is the call.
1: Fall on the way of Australia. So, first of all, congratulations on your 50th T20 International. You've won the coin toss. What are you going to do and why?
4: We're going to have a bowl. Looks like a good pitch to come out here and hopefully put a bit of pressure on early.
1: Did you sort of toss and turn a little bit on the bowling? Is it about 7 to 8 mils out there? Is that what sort of attracted you to it?
4: Yeah, I think so. It does look a little bit furrier than yesterday. It's grown overnight. But, yeah, I think so. And just be able to get out here and have a run around first.
1: Big win against India. Any changes to the team at all?
4: No, we've got the same team.
1: Same blueprint then? You come into a big game like that, last of the round games, do you sort of go, right, same approach, or do you say clean sheet up against the West Indies?
4: I feel like West Indies are, you know, an incredible team, and we have to bring our best, and a part of that is being able to play our style of play, no matter who we are coming up against.
1: You know this one quite well. Captains are players at the Melbourne Renegades. Does that make it easier?
4: Probably not. We were actually just talking about the Renegades before, but she's always good to play against.
1: There we go. We'll find out in a second. Here we go. Thank you. All the best today.
4: Thanks, Jonesy.
1: Hayley, come on in. Batting first. Happy with that?
5: Yeah, I think it's a pretty good wicket here at the Oval. Not going to change too much. We probably would have had a ball first, but at the same time, we feel like we certainly got nothing to lose and can go out there and play a really fearless brand of cricket.
1: It's been a roller coaster ride for you guys. You had the first couple of wins and then a little bit shaky at the end. What do you bring to this team to say, okay, these are the things that we really need to, you know, knuckle down on, double down on today?
5: Yeah, I think we need to keep believing, one, but at the same time, we just need some of our big players to step up. Myself included, I feel like that's probably what we've missed this tournament, but it still brings out a lot of positives, the fact that we have gotten to this stage without a lot of our big players really making big performances.
1: Looks like a kind of ground, too, that you need a big total on.
5: Yeah, 100%. Definitely a higher par score here, and probably, if not the best, one of the best wickets in England. So we're definitely going to have to get the score up in this first innings. Yep.
1: Big West Indian support here today as well, so you'll have them on your side. All the best today.
5: Thank you.
1: Australia have won the toss today, and they'll be bowling first.
6: So the news from Oval coming right there. Sophie Molyneux, the captain of Australian team, winning the toss and choosing to bowl first, as predicted also by prediction king Ravinder Singh ji. Ravi, aapke paas aati hu. Aankde mein dikha rahe the ki chase friendly wicket hai, aur aapko lagta hai high pressure game ke andar Australia ne ye sahi nirnay liya hai aaj bowling karne ke liye?
7: देखिए, मेरे हिसाब से तो फील्डिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि जो पिछला मैच जीती है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ खेलते हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बड़ा चेस किया उन्होंने, और अच्छा बहुत बढ़िया मैच, और वही मुझे लगता है मोमेंटम बना के चलना चाहते हैं। देखिए, ये 20 ओवर्स का जो मैच होता है ना, ये बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है। अब अगर इसमें वेस्ट इंडीज पर प्रेशर रहेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए कितना टारगेट चाहिए, कितना टारगेट सेट करें, और ऑस्ट्रेलिया को पता है ऑस्ट्रेलिया 6 बार का चैंपियन है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको कम से कम 180-190 रन का टारगेट सेट करना पड़ेगा जिस हिसाब से उनकी बैटिंग है। और यही प्रेशर में होता क्या है कि जब आप ज्यादा प्रेशर तेज खेलने के चक्कर में आप विकेट्स गवाते हैं, तो ये मेन गेम यही है। अगर वो वेस्ट इंडीज जीतते हैं, मुझे लगता है शायद वो भी फील्डिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि पहले कितना टारगेट सेट करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए टारगेट सेट करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो यही मुझे लग रहा था प्रेशर गेम है, तो जो भी होगा पहले चेस करना चाहेगा, देखते हैं कि पहले उसमें वो कितना रन बना सकते।
0: जी, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला किया है, और अगर अंतिम 11 की बात करें तो कोई परिवर्तन नहीं है, वही टीम है जो इंडिया के खिलाफ खेली थी। बेथ मूनी विकेटकीपर, जॉर्जिया वॉल, फीबी लिचफील्ड, एलिसी पेरी, जिन्होंने 5 मुकाबले में अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक 183 रन बनाए हैं, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, अनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिन्यू कप्तान ने 5 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन। आशा, कैसे देखती हैं ऑस्ट्रेलियन साइड को?
8: ऑस्ट्रेलियन साइड अगर हम देखें तो बहुत बैलेंस्ड टीम है, चाहे उसमें बैटिंग की साइड देख लीजिए, चाहे आप बॉलिंग देख लीजिए, चाहे स्पिनर देख लीजिए, चाहे मीडियम पेसर देख लीजिए। पर अगर मैं वेस्ट इंडीज की बात करूं, तो उसमें आप केवल एक दो प्लेयरों में ही टीम निर्भर करेगी। अगर जो कैप्टन है हैरी मैथ्यूज, उसके ऊपर, डी डॉटिन के ऊपर, तो कुछ 2-3 प्लेयर हैं कि उनको आज करना ही पड़ेगा, और जो कैप्टन है उनको तो बहुत, मतलब पूरी आज उनमें ही पूरा दामोदर है। अगर वो कुछ टीम को, अगर

0: सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचाना चाहती हैं तो
1: राइट आई विल कम टू यू राकेश सिंस आशा जस्ट नाउ मेंशन दैट वेस्ट इंडीज इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन थ्री ऑफ द मेन प्लेयर्स वन कैप्टन हेली मैथ्यूज सेकंड वी हैव डियांड्रा डॉटन एंड थर्ड ऑफ कोर्स वी हैव स्टेफनी टेलर majority of them have not even been able to perform throughout the season pretty well but they're still the big names how much of the load will be resting on their shoulders today to shine and prove something for the team definitely
2: it becomes tough when you are out there for a knockout game and you don't have runs behind you number one so and they have only two individuals who've crossed 100 so they have only two guys who've scored over you know, like 100 runs one of them happens to cross 150 as well now when you go in for a knockout game and out there you have to go and put the runs on the board and form is not in your favor so this is a worrying factor for the West Indians they have a reasonably good attack but that doesn't mean that they can take the Australians lightly because Australians in an ICC event they are ruthless they come very hard at you very difficult to beat them here the only time you can beat them is probably in a league game when they have an off day and history has shown that Australians don't take an off day when it comes to knockout games and that's why they have such a fantastic record six times they have already had two hat tricks of wins in the same tournament I mean in the same event so I still see that this is Australia's game all the way and as it has already been said here that one of the factors that probably influenced the Aussie skipper was the fact that the way they beat India they chased down a pretty challenging score and they did that so it seems to be quite they've been influenced by that decision
3: जी बिल्कुल और यदि आप ही फर्स्ट बॉल 20 इस कार्यक्रम में सवाल करना चाहते हैं विशेषज्ञों से तो आप हमें फोन कीजिए 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है नंबर है 2342108 5 ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ग्रुप स्टेज में उन्होंने अपने पांचों मुकाबले जीते हैं बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस वहीं वेस्ट इंडीज ने आशा पहले तीन मुकाबले तो जीते थे न्यूजीलैंड स्कॉटलैंड और श्रीलंका के विरुद्ध लेकिन अंतिम दो मुकाबले इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ वो हारे हैं तो दो लॉसेस के बाद यहाँ आ रहे हैं कैसे हेली मैथ्यूज अपनी टीम को मोटिवेट करेंगी
0: मुझे जहां तक लगता है उनको अगर मैं वैसे बोलूं तो अपनी उनको खोने के लिए उनको कुछ ज्यादा है नहीं क्योंकि वो साइड जो ऑस्ट्रेलिया टीम है 6 बार की चैंपियन टीम है और उन्होंने वेस्ट इंडीज ने एक बार इसको ले रखा है चैंपियनशिप को तो उनके लिए बस ये है कि ये अगर मैं वही मैंने जो पहले बोला है कि मैथ्यूज जो कैप्टन है उसके हाथ में बहुत कुछ है अगर वो आज टीम को लेके चली गए मतलब उन्होंने अच्छा खेला बैटिंग बॉलिंग दोनों में तो थ्रू आउट वो आगे फाइनल में पहुंच जाएंगे
1: ओके यस अमित आई थिंक वी हैव अ कॉलर विद अस ऑन द लाइन नमस्कार गुड इवनिंग क्या नाम है आपका स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में बताएं क्या पूछना चाहते हैं
4: अरे रविंद्र सर नमस्कार
2: नमस्कार
1: हमारे सारे पैनलिस्ट आपको नमस्कार कर रहे हैं बताएं क्या पूछना चाहते हैं आज आप कॉल करने के लिए
4: हम कहना चाहते हैं कि कितना स्कोर बनने को अच्छा रहेगा जीतने के लिए
3: जी शुक्रिया कितना स्कोर बन सकता है रविंदर जी यहाँ पर
5: देखिए स्कोर की आजकल कोई लिमिट नहीं है क्रिकेट का जिस हिसाब से उसका नया फॉर्मेट बना है 20 ओवर में आपको पता कुछ भी लेकिन ये जो अब वेस्ट इंडीज के लिए टारगेट है वेस्ट इंडीज को कम से कम नहीं तो 180 रन तो मिनिमम बनाने पड़ेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उनको कुछ प्रेशर में डालना है तो 150 170 रन पे आपने देख अभी इंडिया के अगेंस्ट देखा उन्होंने कैसे खेला तो 180 रन का टारगेट होगा लेकिन देखिए सेमीफाइनल ही होते हैं आप पहले सारे मैच जीतते चले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये प्रेशर गेम है आपको पता एक गलती और आप टूर्नामेंट से
3: राकेश जी दोनों ही सेमीफाइनल कैनिंगटन ओवल में होने हैं और फिर फाइनल जो है 5 तारीख को लॉर्ड्स लंदन में
5: एक सेकंड में आप एक ऐड कर रहा था कि ये दो लास्ट के जो दोनों वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स हैं वो दोनों ऑस्ट्रेलिया हारी है
3: जी
5: और ऑस्ट्रेलिया को अभी तक सिर्फ वेस्ट इंडीज ही है जिन्होंने फाइनल में हराया था तो ये बात भी उनका कहीं ना कहीं माइंड में होगी दोनों सेमीफाइनल्स में हारे
3: लेकिन आज जो आपको पिच दिख रही है यहां पर कितना स्कोर बन सकता है वेस्ट इंडीज का
2: देखिए मेरे ख्याल से जो ऑस्ट्रेलियन अटैक है मैं इसको वेस्ट इंडीज की जो क्षमता है वो मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अटैक के अगेंस्ट क्या क्षमता है ऑन पेपर आप देखेंगे तो वो टीम रन बना सकती है लेकिन आज का दिन ऑस्ट्रेलियंस क्या करते हैं ऑस्ट्रेलियंस का अटैक कितना अगर वो लोग निशाने पर हैं तो मैं ये 150-160 के ऊपर नहीं देखता हूँ स्कोर होना चाहिए 180 अगर आप एक वेस्ट इंडियन फैन हैं तो आप 180 मिनिमम चाहेंगे लेकिन विमेंस क्रिकेट इज अनप्रिडिक्टेबल इसलिए मैं आईपीएल के यार्डस्टिक से या मेंस क्रिकेट के यार्डस्टिक से मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ विमेंस क्रिकेट आई हैव सीन लॉन्ग इनफ इसमें कुछ भी हो सकता है 100 के अंदर टीम ऑल आउट हो जाती है
3: okay.
2: तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा मैं

0: नहीं देता हूं, लेकिन हाँ लेट्स बी फेयर, प्रेग्मेटिक रखो कि अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से 150-160।
1: राइट, और एक श्रोता हमारे साथ अमित है।
2: हेलो।
3: हेलो,
2: नमस्कार जी।
3: नमस्कार सर,
2: अपना नाम बताइए।
3: हम अमित कुमार बोल रहे हैं नालंदा जिला बिहार से। जी
2: जी, क्या पूछना चाहेंगे? आज ऑस्ट्रेलिया कप्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही हैं।
3: जी बोल रहे हैं कि सर 140-145 के बीच का टारगेट मिलेगा सर ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए। सर
2: फिर जीतेगा कौन?
3: ऑस्ट्रेलिया जीतेगा सर, एक तरफा मैच चला जाएगा सर, जितना मजबूत टीम है सर वो।
2: आपको वेस्ट इंडीज टीम अच्छी नहीं लगती?
3: अच्छी लगती तो सर दो मैच हार गया हुआ है अभी इंग्लैंड से और आयरलैंड टीम से सर, छोटा छोटा फॉर्मेट में सर ताबड़तोड़ बैटिंग नहीं करता है, भारत हारा सर, धीमा बैटिंग करने के वजह भारत हार गया।
2: जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए।
1: जी काफी अच्छी बातचीत यहाँ पर हुई और देखने में ये भी सुनने में अच्छा लगा कि हमारे श्रोता को भी इतनी जानकारी थी आज की मैच और टूर्नामेंट के बारे में।
2: तो आशा आपको लगता है विमेंस क्रिकेट धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है अब?
4: हाँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब हम खेलते थे तो कुछ किसी को पता भी नहीं था कि कोई टूर्नामेंट हो रहा है या एशिया कप हो रहा है, कुछ भी वर्ल्ड कप हो रहा है, बट अब जो भी कोई भी सीरीज हो रही है वो भी सब देख रहे हैं, इवन सबको नाम सबका पता है, वो बहुत अच्छा लगता है।
2: मैं बता दूं 2008 में एशिया कप भारत जीते थे और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच 97 रन।
4: हाँ जी,
2: आशा रावत।
4: थैंक यू।
1: वाओ, नॉट बैड। आपके पास आते हो रवि, क्विकली हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, काफी स्ट्रांग साइड है, लेकिन वेस्ट इंडीज की अगर बात करें और सीजन देखें टूर्नामेंट के अंदर स्पिनर्स को काफी मदद मिली है इन सारे विकेट्स के ऊपर, और खासतौर से अगर आज बात करें तो जिस तरीके से वेस्टइंडीज की बॉलिंग की स्ट्रेंथ रही वो उनकी स्पिन है, 71.4 ओवर्स उन्होंने सिर्फ स्पिन के पड़वाए हैं इकलौती ऐसी टीम, और सबसे ज्यादा विकेट्स भी जो वेस्टइंडीज ने ली है सीजन के अंदर वो स्पिनर्स की उन्होंने लिए 22 विकेट्स। क्या आपको लगता है आज वेस्टइंडीज के स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया के सामने कुछ कमाल कर पाएंगे?
5: देखिए पॉजिटिव रहना चाहिए और खासकर 20 ओवर्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने अभी देखा आयरलैंड इंडिया को कैसे हरा रहा है, 20 ओवर्स में दो प्लेयर सही होते हैं, दो प्लेयर अगर 50-60 रन बना देते हैं तो मैच वो 150 रन तक टारगेट अपने आप पहुंच जाता है। तो यहाँ पे एक डे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है, फौची फॉर्म में चल रही है, नो डाउट फेवरेट्स हैं, उनको हराना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन मिराकल्स होते भी आए हैं।
2: जी थोड़ा बॉलिंग बताइए ऑस्ट्रेलिया की हमें सोफी।
6: अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड पर, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: पंचो जय हिंद।
7: धीरज भैया,
8: हाँ बिमला बहनी।
7: भाई देखो, आपने सबके जो खेती पाती हुआ है कैसे चलते हैं मौके पर, का हुआ था है, का स्थिति है
8: भाई? खेती पाती देखो देव राजा, आपने यह समय मेहरबान है ये है, और अपन देश भी जो है ना वो कृषि प्रधान देश है।
7: बिल्कुल,
8: और महान तरह तरह के जो है खेती बाड़ी अपने सब कीने जाते हैं।
7: बिल्कुल,
8: अपने किसान भैया भी जो है महान बढ़ी चढ़ के अपनी खेती बाड़ी के हिस्सा होते हैं।
7: बिल्कुल, आज त्योहार का मतलब खास करके खरीफ के सीजन में जो ये सदी के बात की जाए तो भारत में जो है तमाम हिस्सा में धान के अपनी खेती की जाता है, मौके पर खेते में बेरा लागत शुरू होगा बा। और हमारा पंच जानत भी है ना कि की शुरुआत जो है नर्सरी से होता है ना, और यही हमारे बिया का चयन कर हम पंच बदे ज्यादा जरूरी होता है।
8: बहुत सही बात कहो, और देखो जो बिया के बात कहूँ ना, तमाम रिकिम रिकिम के बिया अपने किसान भैया जो है उनका नर्सरी तैयार करते हैं, और काफी अपने जो किसान पंचे हैं उनके नर्सरी तैयार भी हुई है और उनका लगाव भी शुरू कर दिया।

0: रही हैं, है ना?
1: बिल्कुल शुरू कर दी है, लेकिन कुछ किसान पंच हमारा बहुत जो है आगे निकल गवा है, वह महंग महंग बिया लेके आवत है और खादी के इस्तेमाल करते है। मुला कभो कभो देखा जाता है ना धीरज भैया कि इतना महंग बिया लावे के बादे हमारे सबका रिजल्ट ना मिल पाओ जो मिले के चाहिए, जो पैदावार मिले के चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने सब थोड़ा कोताही जाते हैं कि बिया के चयन नी की तरह नहीं किन जाते हैं।
0: बिल्कुल, बिया के जो चयन है ना उसका अपने सबका जान समझ के नेकी तरह से करे है, और साथ ही साथ अपने सबके जो माटी है वह के भी ध्यान में रखी के अपने सबका बिया के चयन करे है ना। जैसे जहाँ ज्यादा पानी भरत है वह हिसाब से बिया करे, और जहाँ मान लो पानी कम लागत है वह जल्दी पैदा होए वाली बिया के अपने सब प्रयोग कर सके।
1: बिल्कुल, तार खाए के मतलब जल्दी पाके वाली, मध्यम पाके वाली, देर से पाके वाली, जिस अपन खेत हुए वही मुताबिक बिया के चयन करें, वही हिसाब से ज्यादा बढ़िया है। और भाई देखो, चयन करे एक बात है तो अपन भूमि पानी और जलवायु के आधार पर हम सभी खेती करब तो हम जाने थे कि अपन पैदावार बढ़िया हुई।
0: बिल्कुल सही बात कहो, और देखो अपने सब समय समय पे जो है ना अपने किसान पंचन बदे बढ़िया बढ़िया जो है बतकही भी लेके आवा जाते हैं।
1: बिल्कुल, बतकही की बात की जाए तो वही अपने सभी बिया वाली बात की जात रहा, तो बिया की बात की जाए तो बीज उत्पादन हो तो इसे बतकही भी लेके आना अपने पंचायती में कि बीज उत्पादन हो तो उगाए जाने वाली फसलों में ध्यान देने योग्य बातें, और यह विषय पर बतावत है डॉक्टर संजीव कुमार यादव जो उनकी सहायक प्राध्यापक है बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से, और इनसे बतवाता है
0: राम प्रकाश पांडे भैया। तो चलो अपना हो सुने अपने पंचे भी सुने।
1: बिल्कुल
2: पंचो, आज हमारे बीच में है डॉक्टर संजीव कुमार यादव भैया जो सहायक प्राध्यापक बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से है। अयोध्या से हम सब जन बेना बीज उत्पादन हेतु उगाई जाने वाली फसलों में ध्यान देने योग्य बातें। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका हमारी पंचायती में स्वागत है। हम आपसे इतना जानना चाहिए ना कि जैसे कौनो भी काम करे का है खास करके खेती में, तो बिना बिया बोए तो फसल हुए ना
3: जी।
2: तो बीज के उत्पादन पंच भैया कैसे करें, उनका का ध्यान दिए वाली बात यह आप ही है बतावे।
3: बीज उत्पादन के लिए सबसे जरूरी चीज है कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना है और शुद्धता उसमें होनी चाहिए। तो बीज उत्पादन के लिए कुछ प्रमुख बातें हैं, तो पहले भूमि का चयन
2: जी,
3: जो जहाँ पे आपको बोना है बीज के लिए उसका चयन, भूमि का उस क्षेत्र का चयन जरूरी है। फिर पृथककरण की दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस हम लोग कहते हैं, हर फसल की अलग अलग वैरी करती है। अनाजों में जैसे 3 मीटर का गैप होना चाहिए, मक्के में जैसे 400 मीटर है और सरसों में भी 400 मीटर का गैप होना चाहिए। उसके बाद हमको बीज कहाँ से लेना है,
2: प्रमाणित सबसे बड़ी बात यह है
3: जी, प्रमाणित बीज आप लीजिए या न्यूक्लियस बीज लीजिए। तो वो बीज हम कहाँ से लें, तो हमारे आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बीज विभाग है और वहाँ बीज विक्रय केंद्र भी हैं, तो वहाँ से आप बीज लीजिए या किसी राष्ट्रीय योजना के थ्रू जहाँ रजिस्टर या सर्टिफाइड सीड मिलते हैं वहाँ से आप बीज अपना लीजिए।
2: बिल्कुल, जैसे सर्टिफाइड कहें तो बीजों में 2 बीज हुए थे ना, एक फाउंडेशन
3: जी और एक सर्टिफाइड। तो फाउंडेशन यानी न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस बीज जिसको बोलते हैं हम लोग, जो शुरुआती दौर का बीज होता है उसको हम लोग फाउंडेशन बीज बोलते हैं। वैसे इसके 4 भाग हैं, न्यूक्लियस, फिर ब्रीडर, फिर सर्टिफाइड। तो ब्रीडर सीड ज़्यादातर जो अभिजनक होते हैं वो उनके लिए होता है, लेकिन जब वो सर्टिफाइड हो जाता है तो किसानों के लिए होता है। हम लोग अच्छे बीजों का चयन उसी से करते हैं। बीज जो आप ले रहे हैं वो यानी रोग मुक्त हो, जिसको आप कहते हैं रोग मुक्त होना चाहिए। और उसके बाद प्रोसेस है कि बीज बोने के बाद हम क्या क्या करें ताकि वो बीज उत्पादन के लिए हमें बाद में मिले। तो कोई भी बीज हम ले आए, उसको हमने बोया, फिर उसका आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन किया, फिर उसमें हमने खरपतवार नाशकों का उपयोग करके उसे खरपतवार नाशी मुक्त किया, फिर उसमें हमने कीटों को रोगों से मुक्त किया, उचित सिंचाई का प्रबंध किया, कटाई मड़ाई समय पे किया, बीज को फिर लास्ट में हमने सुखाया। बीज का सूखना यानी उसमें नमी को बचाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। बीज में नमी 8-10% हो तब हम उसको स्टोरेज के लिए रखते हैं यानी भंडारण के लिए रखते हैं। और भंडारण में भी कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कि कमरा सही होना चाहिए, फर्श उसकी साफ होनी चाहिए, फर्श से बीज रखने की बीज में कोई पटल रखा होना चाहिए। तो ये सारी चीजों का हमको ध्यान देना।
2: बिल्कुल सही बात के दिन, ये तो पंच भैया अपने बीज उत्पादन के तकनीकी के बारे में जानता है, ये पर तो अपने सब लौट के फिर हो गए। लेकिन डॉक्टर संजीव भैया ऐसे तो ना वैज्ञानिक बन गए।

0: बड़ी मेहनत की हुई है, शिक्षा दीक्षा कैसे भय, कैसे जिंदगी चली, कैसे इधर है पंच सुनते ना, तो उन्होंने सोचा थमाल लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, है कि नहीं? बहुत पापड़ भी अलग पड़त है ऐसे ना। हाँ, कैसे सफर की शुरुआत की और कैसे कहाँ भा मूल निवास कहाँ का पहले थी बता।
1: मूल निवासी हम देवरिया के हैं, लेकिन हमारी कर्म भूमि अयोध्या है। तो
0: पिताजी क्या करे थे? हाँ सब बताओ एकदम।
1: प्रभु श्री राम जी के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। और पिताजी हमारे देवरिया BRDPG कॉलेज से पढ़ाई करके यहाँ पे पशु विभाग में कार्यरत थे। उसके बाद हमारी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा SSB इंटर कॉलेज से है।
0: जी
1: SSB इंटर कॉलेज इंटर करने के बाद मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से अपनी BSc की डिग्री की, और MSc मैंने नरेंद्र यूनिवर्सिटी से MSc

0: बीएससी की डिग्री की और एमएससी मैंने नरेंद्र यूनिवर्सिटी से एमएससी जीपीबी आनुवंशिक एवं पादप प्रजनन विभाग में मैंने अपनी डिग्री प्राप्त की। एमएससी करने के बाद मैं ग्वालियर यूनिवर्सिटी से मैंने अपने शोध कार्य को पूरा किया। तत्पश्चात मैं वहां के एक केवीके पे कुछ दिन कार्यरत रहा। वहां से फिर कोरोना काल में आने के बाद यहां मैंने परमहंस डिग्री कॉलेज में शिक्षा दीक्षा दी है और साथ ही साथ मैंने लॉ की भी डिग्री साकेत डिग्री कॉलेज से लिया।
1: बिल्कुल, ये तो हो गया। लेकिन वैज्ञानिक बने आए तो फिर कैसे आचार्य नरेंद्र देव पहुंच गए?
0: आचार्य नरेंद्र देव का फिर फॉर्म निकला और मैंने एसएमएस का भी फॉर्म भरा था, वैज्ञानिक का भी फॉर्म भरा और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का भी फॉर्म भरा। फिर एसएमएस के फॉर्म में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बाद में मैं काफ़ी दुखी हुआ, लेकिन मैंने निरंतर प्रयास किया, सफलता मिली। फिर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा और उसमें सफलता मिली और जाके मैंने फिर डॉक्टर विजेंद्र सिंह के कार्यकाल में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का पद ग्रहण किया।
1: बिल्कुल, यानी कहा कि मतलब कौनो सफलता असफलता से होके गुजरत है
0: जी।
1: ई ना कि एक बैग तुम्हें सफलता मिल जाए, एकरी सब की तुम्हें पहले एक चैनल से चले पड़ा था
0: जी।
1: है कि नहीं?
0: बिल्कुल।
1: असफलता बहुत लास्ट माउथ का चाहिए करे बारे में जो सुनत है लड़के उनकी तरह थोड़ा सा।
0: सबसे जरूरी है कि आप निरंतर चलते रहिए। आजकल के
1: लगातार चलने वाले निश्चित ही मंजिल पाएंगे।
0: हाँ। आजकल के विद्यार्थियों में क्या है, वो जैसे ही आपकी कोई एक परीक्षा नहीं लिखती वो उस मार्ग को छोड़ के दूसरी परीक्षा की तैयारी करने लगे। किसी एक को लक्ष्य बना,
1: फोकस, एक ध्यान।
0: हाँ, अगर आप टीए बनना चाहते हैं तो आप केवल टीए के लिए पढ़ाई करिए। पता चले आप टीए भी बन रहे हैं, एसएसटी भी बन रहे हैं, आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, लक्ष्य एक बनाइए और उसके लिए निरंतर प्रयास करिए, सफलता जरूर मिलेगी।
1: बिल्कुल, और मैंने कहा था ना कि सब असफल कहाँ रहे देखो और प्रयास करो, और जो लगातार देखबा प्रयास करबा तो आगे बढ़बा। लेकिन हम बीज उत्पादन के बात करते ही, और कौनो फसल में बीज सबसे महत्वपूर्ण हो, अगर बीज में गड़बड़ी हुए तो जोन पंच भैया सोचत है कि ऐसा बीज के करी वो अब आगे का ध्यान रखकर चलें, कैसे शुरुआत करें?
0: तो सीधी सी बात है, वो अच्छे सर्टिफाइड सीड या फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड सीड किसी विश्वविद्यालय से या किसी अच्छी संस्था से जहाँ से उनको मिले उसको लाएं, उनको आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करें।
1: अगर कौन का बात हो परे रजिस्ट्रेशन के तहत या कुछ कहक परे कि ना?
0: नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। आप जिस भी संस्था में, जैसे मान लीजिए हमारे आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय में अगर आप जाएंगे तो वहाँ बीज इकाई है, बीजान संयंत्र है, वहाँ पे बीज विक्रय केंद्र है। उस बीज विक्रय केंद्र में सर्टिफाइड सीड और आपके फाउंडेशन सीड टैग लगे हुए मिलते हैं, और सरकारी विभाग में भी बीज विक्रय केंद्र एनएससी के द्वारा भी सर्टिफाइड और फाउंडेशन सीड बीज विक्रय के लिए मिलते हैं। तो वो सीड को लेके आए, वो शुद्धता उनकी देखें। आजकल मार्केट में हाइब्रिड सीड का बड़ा प्रचलन है, तो उसमें हाइब्रिड सीड में कंपनियां अलग अलग तरह की, वो एक ही जनरेशन के सीड को अलग अलग तरीके से बेचते हैं, तो वो उसमें कई कंपनियां फ्रॉड हैं, झूठी हैं, जो किसानों को गलत दिशा देते हैं। तो आप अपनी सरकारी संस्था से बीजों को लें, वो ज्यादा अच्छे होते हैं।
1: बिल्कुल, विश्वसनीय है, अपने बगल है। ये जोन पंच भैया करता है वहां देखा सुना कि अगली दाए काव केरेन काव सबसे अच्छा है, और खास करके तू बीज उत्पादन की तरह जाता तो यहाँ ध्यान दिए की जरूरत है। जैसे आप कहें रोग मुक्त फसल रहा है, खरपतवार पर नियंत्रण रहा है, कीट रोग पर नियंत्रण रहा है, अक्सर कीटनाशक में फफूंद नाशक का प्रयोग करे पड़े, कैसे यहाँ कागा चाहिए?
0: कीटनाशक और फफूंद नाशक क्या कि आप जब आपकी फसल आपकी लगी हो तो उसमें कीड़े तो लगते ही हैं, साथ साथ में उसमें कोई फंगस लग गया हो, जैसे गेहूं की फसल अभी आपकी बुआई जब होगी तो उसमें फफूंद नाशी लग जाता है या गंडुआ रोग लग जाता है, तो इस तरह इनको बचने के लिए हम पहले से ही बीज का ट्रीटमेंट करें, बीज को शोधित करें, सीड ट्रीटमेंट हम लोग बोलते हैं, वो हम पहले से उसको शोधित करके फिर बुआई करें, तो वो हमारा बीज के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है।
1: भाई बीज उपचार, भूमि उपचार, दोनों उपचार पंच भैया करे थे, यही लिए करे थे कि उनका जो भविष्य में रोग के सामना करे पड़ता है वो ना करे पड़े, और जैसे आप कहें सिंचाई दूरी सब करें, चलत चलत जो पंच भैया आपका रेडियो सुनाता है उनसे आप कहा चाहिए?
0: बीज उत्पादन में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है कि रोगिंग, मतलब उस जैसे आपने किसी वेरायटी के बीज को बोया है, तो मान लीजिए आप सरजू 52 या 2064 ये वेरायटी लगाए तो उसमें 2064 ही रहे, कोई दूसरा प्लांट ना आ जाए, इसको हम लोग रोगिंग कहते हैं कि उसको हम उखाड़ के ही फेंक देंगे, दूसरी प्रजाति अलग कर देंगे तो वो बीज आपका शुद्ध निकलेगा। दूसरा अगर उसमें नहीं आएगा, दूसरी प्रजाति का बीज नहीं आएगा या प्लांट नहीं आएगा, तो वो हमारे लिए शुद्धता मानी जाती है।

0: तो रोगिंग हमें बहुत ध्यान देना होता है। तो रोगिंग तीन अवस्थाओं पे होती हैं, ठीक है। दूधिया अवस्था पे आप रोगिंग करिए पहली बार, एक तो दूसरी चीज फसल पकने की अवस्था पे आप रोगिंग करिए, और जब आप दाना उसको के लिए आप काट रहे हो तब उस अवस्था पे रोगिंग करिए। तो तीन अवस्थाओं पे अगर आपने अच्छे से रोगिंग की है तो बीज उत्पादन आपका हमेशा अच्छा हो।
1: बिल्कुल पंच भैया, जरूर आपसे जान गए कि बीज उत्पादन है तो उनका कौन कौन फसल में ध्यान दिए का है। आप रहे डॉक्टर संजीव कुमार यादव भैया, जो सहायक प्राध्यापक बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से रहे। आप हमारी पंचायती में आई, इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिमना भाई,
3: हाँ धीरज भैया,
2: देखो कितना बढ़िया जानकारी बताई ना अपने जो डॉक्टर रहे ना संजीव कुमार यादव भैया। बीज उत्पादन हेतु उगाई जाने वाली फसलों में ध्यान देने योग्य बातें, और इनसे खूब निकी तरह किससे अपने राम प्रकाश पांडे भैया कितना निक पूछिन है ना।
3: बिल्कुल ये तो रही बत कही, लेकिन पंचन के मन मनसायन करा दी, यही बजे शशिकांत मिश्रा व साथी के शर्मा एक किसानी गीत लेके हैं। चलो पंचे सुने, आनंद लिए।
2: चलो

0: बेनी,
1: हाँ दीदी,
0: देखो कितना बढ़िया गौनाई रही, एकदम जो खुश हो गया है ना।
1: बिल्कुल जी, तो खुश हो गए, लेकिन पंचन के यह रहा था कि हमका नई नई जानकारी दबावा जाए और पंचे वैसे लाभ लिए, तो नई जानकारी की बात है। तो देखो एक वो भी अपने पंचायती महमौके पर मधुमक्खी पालन और नर्सरी की तैयारी यह विषय पर बतावा है विशाल श्रीवास्तव, जो उनकी वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक है गुप्ताघाट अयोध्या से, इनसे बतवाता है राम प्रकाश पांडे भैया। तो चलो इनसे जाना जाए।
2: चलो, अपने सभी खेती बाड़ी तो करी थी, लेकिन खेती बाड़ी करी थी तो ओमा कैसे खूब बढ़िया सरकार के फायदा उठा सकी थी। अपन डबल इंजन के सरकार है और केंद्र सरकार का तो 12 साल रह गया, 12 साल में किसान के लागत कैसे घटी और इनकम खूब बढ़िया बढ़ी, खूब सब्सिडी मिलती है, ये जानने के आज हम मौजूद है यहाँ गुप्तार घाट में। हमारी बात होती है सर, अपन नाम पूरा पता बताए जी।
3: मैं विशाल श्रीवास्तव, उद्यान निरीक्षक। आप सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि इस समय मधुमक्खी पालन उपकेंद्र है अयोध्या में, यहाँ पे 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है
2: जी।
3: तो जिसमें कभी भी वो 7 दिवसीय जो चलता है उसमें कोई भी किसान आकर के एनरोलमेंट करा करके मधुमक्खी पालन के संबंध में, किसी पालने से लेकर के उनको बचाना, माइग्रेशन कराना, इन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकता है, जिससे उनको एक्स्ट्रा इनकम भी, अपनी खेती के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। क्योंकि मधुमक्खी पालन में यह है कि मधुमक्खियां जहां भी रखी जाती हैं वहां के फसलों की जो उत्पादन क्षमता है वो 15-20% अपने आप बढ़ जाती है। दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ केंद्रीय पौधशाला है, संतति पौधशाला है, कंपनी बाग है और बीकापुर की है और फिर खोली की पौधशालाएं हैं। अभी इस समय हमारे यहाँ नवीन उद्यान रोपण का कार्यक्रम आएगा, तो कई तरीके के आप बाग ले सकते हैं। बाग लगाने के लिए हमारे यहाँ से पौधे उपलब्ध हैं, जैसे आम के, अमरूद के, बेल के, ये सब कलमी पौधे हैं जो बहुत ही अच्छी प्रजाति के और बहुत ही सस्टेबल हैं, जो मरते नहीं जल्दी और उत्पादन भी इनका अच्छा होता है
2: जी।
3: और दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ मधुपुर में मसौदा में एक हमारी हाईटेक नर्सरी है, उसमें भी जो किसान भाई हैं वहां से बीज अपना दे करके, अपना कोई बीज ला करके यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे जब पौध उसका उत्पादन उसका हो जाएगा तो 1 रुपया यहाँ पे दे करके वो पौध ले जा सकते हैं। अगर वो बीज नहीं देना चाहते हैं तब भी यहाँ पे पौध 2 रुपए में उपलब्ध है, वो ले जा करके अपने खेतों में लगाएं और उससे
2: यानी बिया दे दें तो 1 रुपया दिए। बिल्कुल उनका तैयार।

0: कहके मिल जाए।
1: हाँ।
0: और अगर ना दिया तो कोनो दिक्कत
1: तो
0: ना, 2 रुपया दिए
1: तो 2 रुपया दे करके स्वस्थ पौधा लेकर के जाए अपने खेतों में लगाए और लाभ पाए।
0: ये सिर्फ मधुपुर में है,
1: ये मसौदा मधुपुर में है, मसौदा के वीके से 2-3 किलोमीटर आगे है।
0: बिल्कुल पंचभैया देखते हैं भरत कुंड से आवे तब परे, और चाहे इटौरा चौराहा से जाए तब मधुपुर परे, पंचभैया अपन जा सकते है वहाँ से ले सकते। एक बात, ये सब योजना में लाभ पाते पंचभैया का कोनो रजिस्ट्रेशन करा पड़े करे?
1: जैसे आपको अगर नवीन उद्यान रोपण में जैसे कार्यक्रम में कोई चीज लेनी है तो इसके लिए आपको हमारे यहाँ मिशन MIDH की योजना चलती है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसमें आपका एक आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, अपनी खेतौनी और एक फोटो, ये चीज ला करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसके बाद आपको उस योजना का लाभ आपको दे दिया जाएगा। लेकिन इस योजनाओं में एक चीज है, ये प्रथम आवक प्रथम पावक के
0: मतलब जिस समय से रहे वो पहले पाएगी, ईरान की कोनो जुगाड़ लागे का है।
1: जुगाड़ नहीं, जो वो ऊपर से क्रमवार उसको लाभ मिलेगा।
0: कितनी सब्सिडी हुई लमसम?
1: सब्सिडी इसमें 40% की उसमें मिलती है आपको,
0: यानी पंच भैया का लाभ है। लाभ है, बिना सोचे कि डबल इंजन के सरकार है तो कौन लाभ है। 12 साल में अपन यह उपलब्धि है पंच भैया का
1: है
0: कि सोचा बिया तैयार कैके मिलता है, हर ऐसी वरायटी तैयार हो गया पंच भैया का की ले जाए जो पहले लगा उतरे सुखा जाता है वो सब चक्कर।
1: अब वो सब चक्कर नहीं है क्योंकि वो हाईटेक नर्सरी, वहाँ पे कीड़े लगना ये सब कोई उसमें, और बिना दवा के वो सिर्फ तैयार होते हैं।
0: क्या जब बात बता रही है। और तीसर बात आप बता देना, अपन जो मित्र कीट है मधुमक्खी,
1: हाँ मधुमक्खी
0: उनका लग, अगर
1: हाँ कोई भी मधुमक्खी पालन का कार्य करना चाहता है तो यहाँ पे आकर के वो ट्रेनिंग सेशन चलते हैं, उसमें आए और प्रतिभाग करे और जानकारी प्राप्त करे, अपना कार्य शुरू करे।
0: और सही कहते हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर की तरह ट्रेनिंग लेते हैं, क्या करें?
1: कुछ नहीं करना है, बस आकर के रजिस्ट्रेशन करा लें। उसके बाद एक बैच रखा जाएगा कि इस दिनांक से लेकर के इस दिनांक तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें वो आए और प्रशिक्षण प्राप्त करें। और
0: बिल्कुल पंच भैया का आवे का यहाँ अपने जिला उद्यान में,
1: हाँ ये ऑफिस है, जिला उद्यान अधिकारी का ऑफिस है यहाँ गुप्तार घाट पे। यहाँ आकर के सारे कार्य रजिस्ट्रेशन और सब चीज हो जाएगी, सारी चीज की जानकारी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा।
0: बिल्कुल आवे तो कौन कौन कागज लगाए आवे हाथे?
1: वही कह रहे, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी और एक अपने खेतौनी की कॉपी, ये इतनी चीज लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और एक फोटो।
0: हाँ, ये ना कि जो पंच भैया हमारे अयोध्या में सुनता है वो नहीं, ये व्यवस्था बरोपुर में है, पूरे प्रदेश में
1: है
0: कि नहीं? ये लिए पंच भैया का अपने प्रदेश के जो लाभ है, डबल इंजन सरकार के लाभ का है, ये पंच भैया जान लिए कि यह लाभ है कि अपने सबके लागत कम लागे, इनकम ज्यादा हो। अरे तो फिर मोच हट के मुस्किया बाजी है कि नहीं? एकदम चलत चलत अपन नाम और पता फिर से बता।
1: मैं विशाल श्रीवास्तव, उद्यान निरीक्षक, अयोध्या गुप्ता घाट पे हमारा ऑफिस है। आप यहाँ पे आकर के कभी भी संपर्क कर सकते हैं, हम लोग मिलेंगे।
0: बिल्कुल, आपका वर्किंग डेज में आ जाएगा,
1: वर्किंग डेज
0: कार्य दिवस में आई है तो निश्चित आपका जौन मनोकामना हुई
1: वो सब पूर्ण। उद्यान विभाग से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देकर के पूर्ण लाभ दिया जाएगा।
0: बिल्कुल, आप हमारी पंचायती में इतनी बढ़िया जानकारी दी, जरूर हमारे पंच यह बात से लाभ उठाई है कि उनकी तरह सरकार कितना काम कर दिया है।
2: देखो कितना बढ़िया जानकारी रही मधुमक्खी पालन और नर्सरी की तैयारी है ना,
3: ये विषय पे कितना नीकी तरीके से बताएं विशाल श्रीवास्तव जो उनकी वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक गुप्ता घाट अयोध्या से रहे। और इनसे पर्याय पर्याय राम प्रकाश पांडे भैया पूछे, हम जाने थे कि अगर पंचेक करिए तो हम जाने थे कि लाभ है लाभ मिले, लेकिन लाभ के बात की जाए तो अपने सबका लाभ मिले, लेकिन मौसम का देखत भाई अपने सब लाभ ले जाए, पानी बरसे और बेरन लगावा जाए।
2: सही कहा तू, देखा मौसम का जो अपने सबका जानकारी मिला है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से, वही के मुताबिक जो पिछले 24 घंटा का अधिकतम तापमान रहा वो रहा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जो उनकी सामान्य से 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहा, और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जो उनकी सामान्य रहा।
3: बिल्कुल, जो सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम रही वो 82% रही और न्यूनतम जोन रही 48% रही। हवा की गति 5.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रही। एक दिशा रही दक्षिणावा पूर्वावा, और भाई देखो वर्षा 0.0 मिलीमीटर रही।
2: बिल्कुल, पूर्वानुमान यह है कि आने वाले 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से घना बादल जो है उछाए रहे, साथ ही साथ कहूँ कहूँ जो है गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के भी संभावना है।
3: बिल्कुल, ये तो रही मौसम की जानकारी आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से जो हमारे सबका मिली रही, लेकिन साथ अपने सब अपने पंचन का अगौरत हुए हैं जो खेते में अपने अनाज उत्पादन के हुए वो के भाव था ओके। तो आज बाजारी के भाव मिला है कुछ यह मेरे से है, चावल का मन 3100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, गेहूं दड़ा 2560 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का पीली रही 2350 रुपया प्रति क्विंटल।

0: उड़द काली रही 9,370 रुपया प्रति क्विंटल, चना देसी 6,500 रुपया प्रति क्विंटल, अरहरी की दाली रही 11,000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से।
1: बिल्कुल, और मसूर के भाव रहा 7,240 रुपया प्रति क्विंटल, आलू जरकी रही 875 रुपया प्रति क्विंटल, प्याज ललकई रही 1,600 और टमाटर के भाव रहा 2,800 रुपया प्रति क्विंटल।
0: जहमा लहसुन रहा 7,225 रुपया प्रति क्विंटल, तरोई 1,285 रुपया प्रति क्विंटल, खीरा 1,900 रुपया, बैगन 2,000 रुपया, हरी मिर्च 2,800 रुपया, जेमन कद्दू 1,000 रुपया प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 3,950 रुपया, करेला 1,700 रुपया प्रति क्विंटल।
1: सेब के भाव रहा 12,260 रुपया, आम रहा 3,570 और चीनी के भाव रहा 4,130 रुपया प्रति क्विंटल।
0: बिल्कुल, ये तो रहे बाजारी के भाव, लेकिन समय इजाजत ना देता है और आगे बात बात कहीं करे का फिर कहियो मिला जाए, तब तक हमें यानी बिमला का,
1: हमें यानी धीरज का देनमती
0: जय हिंद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे,
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा,
3: परम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: सहकारी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड पर।

श्रोताओं आइए आपको बता दें अपने आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम, आज शाम 7:30 से आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य लंदन में खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। आइए अब आपको बता दें अपने कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुनेंगे 7:30 पर। 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आप सुनेंगे कल प्रातः 8:30 पर। इस कार्यक्रम में कल आज की बात का विषय होगा वन महोत्सव सप्ताह। साथ ही इसी कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे भवानी प्रसाद पाठक से उनका काव्य पाठ वृक्ष लगाएं पर्यावरण बचाएं। 9:00 आप सुनेंगे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इनफरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 12:30 पर आप सुनेंगे अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा कुछ तुमने कहा कल दोपहर 1:00। कल दोपहर 2:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। 2:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण बहनों के लिए कार्यक्रम अंगना। इस कार्यक्रम में कल बहनें सुनेंगी चर्चा वन महोत्सव सप्ताह। साथ ही फरमाइशी लोक संगीत का कार्यक्रम होगा लोक सुरमाला। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे।

0: कल दोपहर 3 बजे हम अधिवाशोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी कल शाम 5 बजे। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे चर्चा वन महोत्सव सप्ताह व्यक्ति विशेष के अंतर्गत। कल आप जानेंगे विधान चंद्र राम जी के बारे में। साथ ही साप्ताहिक सेगमेंट होगा हमारा खेल संसार। कार्यक्रम लोक संगीत आप सुनेंगे 5:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे 6:10 पर। लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुनेंगे 6:30 पर। कार्यक्रम कृषि जगत आप सुनेंगे 6:45 पर। इस कार्यक्रम में कल चर्चा का विषय होगा खेत बचाओ अभियान। साथ ही इसी कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे श्री गणेश शंकर यादव से की के भेंटवार्ता। विषय होगा केकेसी और फसल बीमा योजना। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुनेंगे कल रात 8:15 पर। कार्यक्रम महफिल गजल आप सुनेंगे कल रात 9:15 पर। सजीव फोन इनफॉरमेशन फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा हेलो अयोध्या कल रात 9:30 पर। ये थी हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: प्लेटो का कथन है बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। देश में पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य। केंद्र सरकार ने बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध कल से हटाने का लिया फैसला। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक। अगले 2 दिनों में अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना। तापमान में आएगी 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर समेत प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि विकास की इस यात्रा में रामपुर भी शामिल है जहां पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक पहचान और युवाओं को रोजगार मिल रहा है।
3: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
2: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री

0: ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेशेल्स यात्रा के दौरान वहां के शीर्ष नेताओं को भारत के पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प की वस्तुएं भेंट की। इनमें मुरादाबाद के कारीगरों द्वारा निर्मित पीतल का कछुआ भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की समृद्ध शिल्पकला के साथ ही हमारे कारीगरों का कौशल आज वैश्विक पटल पर नई पहचान गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पीतल नगरी मुरादाबाद के हस्तशिल्पियों का बनाया हुआ पीतल का कछुआ सेशेल्स के राष्ट्रपति को भेंट करना प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। उन्होंने प्रदेश की स्थानीय शिल्पकला को नई और भव्य पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
1: वो लोक माता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास करकर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो, ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
0: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के हर जनपद में कल से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में में विकसित होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर

0: ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग कल से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहनों के धारक स्कूलों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक शत प्रतिशत स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि बिना परमिट, फिटनेस और भौतिक रूप से असुरक्षित दिखने वाले स्कूल वाहनों को निरुद्ध करते हुए उनकी सूची स्कूलों के नाम सहित जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजी जाए। प्रदेश सरकार ने यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का फैसला लिया है। शासन की ओर से बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। कानपुर, उन्नाव, पीलीभीत, हमीरपुर, अंबेडकर नगर समेत आसपास के जनपदों में रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मॉनसून प्रदेश में प्रवेश कर चुका है और आगामी दो दिनों में प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है।
2: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले दो दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले तीन दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। देश में पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य। केंद्र सरकार ने बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध कल से हटाने का लिया फैसला। और प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, अगले दो दिनों में अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना। तापमान में आएगी 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
4: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य लंदन में खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल।

0: Goodness me, it was into the hands and Wall dropped an opportunity. Sanjay, that is absolutely a regulation catch gone down.
1: बहुत ही आसान कैच था, बहुत ही आसान कैच था. ऐसा लगा था कि वो शायद गिरफ्त में आ जाएगा, लेकिन कैसे बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर के उसे पूरी तरह से हाथ से छोड़ दिया.
0: That was the inverted cup catch that the Australians are good at. And Joseph gave a wonderful opportunity and she was almost 5-6 yards inside the fence. As here's the next delivery, by the time the batters have taken a single and Matthews faces the next one, absolutely on the stump line, plays it across the line and no runs taken. What an opportunity. Both of them had been dropped once and this was the easiest of all. I'm sure Wall will certainly have to rethink. This should not get expensive. The fifth delivery of the over. Gardner comes in over the wicket. Balls in to Matthews. Matthews of the back foot wants to strike on the offside but then misses the line of the ball completely. Probably that extra little bounce of that ball took the ball over the bat there. And no runs taken. So very good over so far from Ash Gardner. Last delivery. Here's the one which is given a bit of a bit, but what a feeling there at point. And once again, Wall picks it up. And 37 for the loss of no wicket after 7 overs. Just about 2 singles in this over.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: तो निश्चित तौर पर अब तक ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों का पलड़ा आप कह सकते हैं भारी है इस मुकाबले में. पिछले 4 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 12 रन बने हैं. कोई सिक्सर, कोई छक्का देखने को मिला नहीं अब तक इस मुकाबले में. और जैसा कि हमारे स्टैटिस्टिशियन प्रदीप कुमार तुमड़े ने बताया कि कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट में अब तक 103 छक्के लग चुके हैं, लेकिन आज एक भी छक्का नहीं लगा है. और 37 रन बिना किसी नुकसान के 7 ओवर के बाद पहली गेंद ऑफ स्टंप पर सदरलैंड की और उसे हल्के से केवल प्लेस किया इकलौते रन के लिए मूनी के दस्ताने में. अब रनों की रफ्तार बढ़े कैसे? लगातार प्रयास कर रही हैं जोसेफ और ये जो कैच छूटा था एकदम ऐसा लगा कि जैसे शायद वो निश्चित तौर पर हाथ पर आना चाहिए था. एक आसान सा कैच और इस तरह के जीवन दान देना आपको कई बार परेशान कर सकता है. तो बड़ा जीवन दान वहां पर जॉर्जिया वॉल ने दिया. 8वां ओवर पारी का सदरलैंड का इस ओवर की अगली गेंद और इस पर रक्षात्मक तरीके से केवल खेला, कोई रन बनाने का मौका नहीं. ओवल का जहां तक सवाल, इससे पहले एक मुकाबला यहां पर खेला गया जो कि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को चेस करते हुए पराजित किया. 164 रन बनाए थे इंग्लैंड ने उस मुकाबले को जीतने के लिए. 5.18 का औसत, यह औसत कतई ऐसा नहीं है जो वेस्ट इंडीज को इस मुकाबले में फ्रंट सीट पर खड़ा कर सके. बड़ा स्ट्रोक लेकिन टप्पा खाते हुए गेंद सीधे गई बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन की दहलीज पर, वहां जाकर के फील्ड हुई और इकलौता रन वहां पर. तो अब बढ़कर के 39 रन हुए हैं. स्ट्रगल कर रहा है वेस्ट इंडीज लगातार रन के लिए और ये दृश्य कतई वेस्ट इंडीज के इन दोनों बैटर्स के लिए अच्छा नहीं है. मैथ्यूज ने जमकर के शुरुआत की थी, धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा जैसे अपने साथी का प्रेशर उन पर भी आता जा रहा है. अगर कैच की एफिशिएंसी देखें ऑस्ट्रेलिया की तो कुल मिलाकर 58% के आसपास है. एक वर्ल्ड चैंपियन टीम के लिए अगर आप ये रेशो देखें, ये औसत देखें तो शायद बहुत अच्छा नहीं. ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद और इस बार भी बल्ला भर चला और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ. अब ऐसे में जब जोसेफ का बल्ला चल नहीं रहा है, जोसेफ चल नहीं पा रही हैं, खेल नहीं पा रही हैं, कप्तान के पास क्या विकल्प है? क्या जोसेफ को अपनी पारी में आक्रामकता और लानी चाहिए? अगर विकेट गिर भी जाए तो इस समय कोई नुकसान नहीं. और यह बड़ा स्ट्रोक, यह बड़ा स्ट्रोक, पहला छक्का जोसेफ के बल्ले से. संभवतः इसी तरह के स्ट्रोक्स की जरूरत थी. गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के ऊपर से, कोई मौका नहीं.

0: ये लगा आभा का छक्का।
1: A very first confidence stroke over the long on region because she found that it was in the slot and no great effort, very little effort, most best productivity achieved. Sanjay, very good confidence.
2: Badiya stroke. Kya ye bada stroke aapko aur ek aur bar ये गेंद टप्पा खाकर के ऊपर जरूर गई थी, दूरी तय नहीं कर पाई, लेकिन दो रन लेने के लिए पर्याप्त मौका। सदरलैंड का ओवर इसके साथ ही समाप्त हुआ। आठ ओवर के बाद वेस्ट इंडीज 47 पर नुकसान।
1: सो वेल वेस्ट इंडीज दिस ओवर हैड बीन रादर अ बिट ऑन द एग्रेशन मोड फ्रॉम जोसेफ हु वेंट फॉर अ बिग सिक्स ऑन द ऑन साइड टू द लॉन्ग ऑन रीजन and she made sure that she connected the ball well. But what I've seen so far is that this pitch, if you look at the batters getting the ball, they're not really getting it connected on to the bat, because sometimes the ball just holds up. And this pitch, as we said earlier, that might just trouble the batters initially. Their timing might slightly get off synchronization, and that's what we have seen. They're trying to play the ball and the ball goes elsewhere, and the connect between the bat and ball really doesn't happen. So it happens in cricket in some of the grounds, and Oval is one such area where we've seen that the team that bowls first, bats second, the win percentage of that side had been rather very, very encouraging. So Australia will be fancying a victory here. I'm just saying fancying, but it all depends on the last delivery bowl. It is Wareham being brought into bowling attack. 6 matches, 5 wickets for her. She comes in and bowls. And bowling! This is the one she's trying to play, that scoop! And the wicket falls, and one gets the wicket of Matthews for the score of 30 of 26.
2: Matthews ka wicket chala gaya. और ये परेशानी का सबब है वेस्ट इंडीज के लिए। मैथ्यूज बेहतर खेल रही थी, जोसेफ नहीं चल पा रही थी। इस बार इस गेम को आगे बढ़कर के हल्के से केवल प्लेस करना चाहती थी, लेकिन गेंद टप्पा खा करके अंदर की ओर आई और पूरी तरह से लाइन को मिस किया मैथ्यूज ने। पहला विकेट वेस्ट इंडीज का गिरा 47 के स्कोर पर। 9वें ओवर में हेले मैथ्यूज 28 गेंदों पर 30 रन बनाकर वारहम का शिकार बनी। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ, वारहम लाई गई और आते ही उन्होंने ये सफलता हासिल कर ली।
1: संजय, इफ यू रिमेंबर व्हेन द इंडियन टॉप ऑर्डर वाज बैटिंग, स्मृति मंदाना, शी ट्राइड टू सिमिलरली प्ले अ स्ट्रोक लाइक दिस व्हेन शी वाज वेरी वेल एंट्रेंच्ड। एंड समटाइम्स व्हेन द बॉल इज राइट ऑन द स्टंप लाइन, इफ यू टेक अ रिस्की शॉट लाइक दिस, वांट टू स्कूप द बॉल और पैडल स्वीप द बॉल, इफ यू मिस इट सर्टेनली इट विल नॉक योर स्टंप्स।
2: बिल्कुल, इस तरह के स्ट्रोक खासतौर पर जब गेंदबाज अपनी शुरुआत कर रहा हो, पहली एक दो गेंदे हो, आपने अगर उनका 3-4 गेंदे या एक ओवर नहीं खेला हो, तब रिस्क नहीं लेना चाहिए। कम से कम इस तरह के स्ट्रोक जब आप विकेट खुला छोड़ देते हैं, बल्ला चलता है आपका, और अगर टप्पा खा करके वो गेंद आपने मिस की तो फिर विकेट गिरता, और वही हुआ मैथ्यूज के साथ।
1: सो कैम्बल कम्स इन, फेसेस द फर्स्ट डिलीवरी, अ लिटिल ऑकवर्ड, बट देन स्लाइटली प्लेस ऑन द ऑन साइड। But then I must say that the way Matthews played that last one, she went outside the off-stump line. As here's the next delivery from Wareham, and that's been played onto the onside to the backward square, and that hits the fence for sure, 4 runs.
0: ये लगा आभा का चौका।
2: बेहतर रणनीति, आपको स्ट्रोक्स की जरूरत है, अन्यथा आप फील्डर्स आप पर हावी होंगे। थोड़ी सी फ्लाइट कराने की कोशिश थी और बढ़िया स्ट्रोक खेला, फील्डर के नीचे से गेंद निकल गई 4 के लिए।
1: Another delivery now outside the off stump, and Campbell, who is a daring batter, she doesn't mind playing those strokes initially. She doesn't take time to settle down, and the way she played that sweep stroke, almost like a slog sweep on the own side, and got a boundary. The next one is defensive. The 9th over underway. Wareham comes and bowls. She's a leg spinner. Bowls wide outside the off stump. That goes further away. And off the back foot, just about plays the ball into the extra cover region. No fielder there. And that's for another boundary. 4 runs.
0: ये लगा आभा का चौका।
2: चलिए, विकेट कीपर कैम्बल ने आने के बाद 2 strokes लगाए हैं, 2 चौके लगाए हैं, और वेरहम को जो सफलता मिली थी शुरुआत में, उस सफलता पर थोड़ा सा पानी फेरने में सफलता हासिल की है। लेग ब्रेक गेंदें आ रही हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि कैम्बेल को कोई परेशानी है।
1: Yes,

0: Delivery that's on the midland leg stump, and the batter plays it, offering the full face of the bat, and plays it down back into the hands of the bowler. No runs taken. 9 overs gone. A 6 is full over. 55 for 1 West Indies.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
3: लिए मत, जानिए आभा के बारे में.
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
4: नए ओवर की शुरुआत. एक विकेट गंवा चुका है वेस्ट इंडीज. हैली मैथ्यूज के तौर पर काफी अनुभवी टीम की कप्तान, 9 ओवर के बाद 55 एक विकेट पर, रनों का औसत थोड़ा सा बढ़ता हुआ 6.11. सदरलैंड की जगह पर केन पासी के लिए अब मॉलिन्यू आई हैं. बढ़िया स्ट्रोक केन का, ओहो, लेकिन खिलाड़ी मौजूद था एकदम बाउंड्री लाइन के ऊपर, सीधे हाथों में गया और ये दूसरा विकेट गवा दिया, यानी कि सलामी जोड़ी बाहर हुई वेस्ट इंडीज की. जोसेफ का विकेट भी गिर चुका है.
0: Well, this is once again taking a chance and trying to play across the line. A premeditated stroke went up in the air to the mid-wicket region, straight into the hands of the waiting fielder. Didn't have to do much about it. And a wicket comes in the very next over. So two consecutive overs and two consecutive wickets. Quite a juice of Scott Gardner. Bowled Molyneux. So Molyneux gets another wicket, and this probably may just set a different run rate once a new batter comes in. Both openers gone back to the pavilion.
4: बिल्कुल प्रेशर अब जबरदस्त होगा, क्योंकि आपने दो विकेट भी गंवा दिए, रन्स भी नहीं बने. स्ट्रोक पड़ा था लेकिन शायद फील्ड का तरीके से मुआयना नहीं किया. जहां पर गेंद गई वहां पर बहुत इत्मीनान के साथ वो कैच पकड़ दिया गया. तो दूसरा विकेट वेस्ट इंडीज ने गंवा दिया है. सलामी जोड़ी जा चुकी है, कियाना जोसेफ और हैली मैथ्यूज दोनों इस समय वापस पवेलियन में लौट गई हैं. कैंबेल आई हैं. अब कैंपेल के बाद कौन आता है खेलने के लिए? डॉटन आज पूरी तरह से फिट नहीं दिखाई दे रही. स्टेफनी टेलर.
0: बट संजय, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज इफ अ बैटर इज स्ट्रगलिंग एंड गेट्स आउट, अ न्यू बैटर कम्स इन, देयर कुड प्रोबब्ली बी एन इंप्रूवमेंट इन द रन रेट्स.
4: ऐसा लगा था खासतौर पर जब कैंपेल खेलने के लिए आई. दो बड़े स्ट्रोक लगाए उन्होंने, लेकिन एक के बाद एक, दो विकेट गिरने के बाद एक प्रेशर तो अनावश्यक तौर पर उन्होंने ओढ़ ही लिया है, क्योंकि रन्स भी नहीं बन रहे और दो विकेट भी चले गए. अगर रन्स बनते तो शायद बेहतर स्थिति होती. मॉलिन्यू को यहां पर सफलता मिली और एक अच्छी सफलता. स्टेफनी टेलर आई हैं. क्या बेहतरीन ऑलराउंडर हैं. 3,666 रन हैं इनके कुल मिलाकर. 90 की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली इस बार. हल्के से ऑफ स्टंप पर मॉलिन्यू का जहां तक सवाल, काफी कसी हुई और अच्छी लेंथ पर गेंदें डालती हैं लगातार. लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदें उनकी, और उसको समझना कम से कम शुरुआत में थोड़ा सा परेशानी वाला काम होता है. इस बार कदमों का इस्तेमाल किया. क्या टप्पा लेग स्टंप के बाहर था या टप्पा बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर था और इसीलिए वाइड का इशारा. अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़कर के अब 3 हुई है और वेस्ट इंडीज अब तक स्ट्रगल कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया के अगर आप पुराने रिकॉर्ड को देखें, इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसको देखते हुए, आधा सफर बीत जाने के बाद अगर आपके स्कोर बोर्ड पर 57 रन है और दो विकेट आपने गंवा दिए हैं तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है. मोड़ना चाहती थी बल्ले के मुंह को, उन्होंने मोड़ा जरूर था ऑन साइड पर, लेकिन गेंद उनके अनुमान से ज्यादा टर्न ली. उछाल था, टप्पा लगा और गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पर लगकर थोड़ी देर हवा में थी, अपनी जगह पर सुरक्षित. और इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन एन वक्त पर स्ट्रोक को चेक किया. मॉलिन्यू बहुत ही बुद्धिमत्ता से गेंदबाजी डाल रही है, खासतौर पर उनकी लेंथ लगातार परेशान कर रही है कैंबेल को. पिछले ओवर में जब लेग ब्रेक के खिलाफ उन्होंने दो चौके एक के बाद एक लगाए, वही ऑफ ब्रेक के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है. और इस बार स्वीप शॉट खेला था लेकिन गेंद सीधे गई चौचिया बॉल के पास, उन्होंने फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं. वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेल रहे हैं. दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच होगा. भारत अपना पिछला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हार कर एक कड़े मुकाबले में बाहर हुए सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सके और इस बार बैकफुट पर गई।

0: So now, a big question, how many more runs before the 20 overs get completed, because we haven't seen the kind of boundaries, except for 1-6 earlier from Joseph. There's not been great batting potential from West Indies.
1: बहुत हैरत में डाला है वेस्ट इंडियन ने अब तक. ये आखिरी गेंद है कार्टनर की.
0: Next one, which is outside the off stump, and a bit of bounce collected over the stump there. Very good over from Gardner. 11 overs gone. West Indies 59 for 4. This run rate is 5.36.
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा

0: Over the stumps there. Very good over from Gardner. 11 overs gone. West Indies 59 for 4. This run rate is 5.36.
1: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
5: तो अगले ओवर की शुरुआत हो रही है. वेस्ट इंडीज ने अपने चार बैटर्स गवा दिए हैं और शुरुआती अगर बैटर्स इस तरह से चले जाएं कोई बड़ा स्कोर किए बिना तो प्रेशर नीचे के लिए आता है. शिनेल हेनरी आ रही हैं और इसकी वजह यह है कि डॉटन आज मैदान के ऊपर अब तक दिखाई नहीं दी हैं. एक दृश्य में हमने देखा था कि वो थोड़ी सी इंजर्ड दिखाई दे रही थी. अब उनकी वापसी होगी या नहीं. पिछली 18 गेंदों में 4 विकेट गिर चुके हैं और रन्स तो नाम मात्र के ही बने हैं. बेरहम 12वें ओवर की पहली गेंद डाल चुकी हैं. हेनरी का जहां तक सवाल, 5 मैचों में 82 रन, स्ट्राइक रेट 137. बेरहम की एक गेंद और इस बार बैकफुट पर जाकर के एक गैप्स तलाशा. एक रन के लिए अपनी दौड़ पूरी की वहां पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता. ये एक रन और पूरा किया. फॉयबेलिच फील्ड वहां मौजूद थी और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ पहुंच गया है 61 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद को रक्षात्मक तरीके से रोका. खेल की जो गति है वो तकरीबन वेस्ट इंडियन बैटर्स की वजह से बहुत धीमी होती हुई. न तो रन बन रहे हैं न विकेट सुरक्षित हैं, तो एक ऐसी स्थिति में है जहां से शायद उन्हें उबर पाना कोई आसान काम होगा नहीं. और इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार भी कोई रन नहीं. गेंद सीधे फील्डर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं. जहां तक ऑस्ट्रेलिया का सवाल है, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें इस विश्व कप में, तो दक्षिण अफ्रीका को 65 रन से हराया, बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया, इसके अलावा नीदरलैंड्स को 98 रन से ये स्ट्रोक खेला. वेरहम की गेंद पर कैंपबेल ने इकलौते रन के लिए. एक एक रन आ रहे हैं, कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिल रहा है. पाकिस्तान पर 113 रन की शानदार जीत और उसके बाद भारत को उन्होंने पराजित किया. 3.882 का नेट रन रेट था और वो तब था जब ज्यादातर टीमों का नेट रन रेट माइनस में था. 12वें ओवर की आखिरी गेंद वेरहम की, अच्छी कसी हुई गेंदबाजी. अब तक 3 डॉट बॉल डाली उन्होंने. रनों का औसत लगातार नीचे जाता हुआ 5.24 पर. तैयार हैं स्ट्राइक लेने के लिए. फ्लाइट कराने की कोशिश, ड्राइव किया, हालांकि गेंद की एकदम जो टर्न थी उसके नीचे नहीं पहुंची थी, गिल्लियां बिखेरी गई, लेकिन रन यहां पर पूरे हो गए. और इस रन के साथ, हालांकि ऐसा भी लगता है कि शायद बिल्कुल एक रन दिया गया है, 12 ओवर के बाद स्कोर है वेस्ट इंडीज का 63-4.
6: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: वेस्ट इंडीज इन डायर स्ट्रेट्स 63 for 4 एंड अ स्कोर एज शमल सेज दैट इन द लास्ट 3 ओवर्स 12 runs were made. I'm repeating, 12 runs, 4 wickets lost. What a deadly combo of the Australian bowlers. They really bowled well. Here's Gardner coming into bowl to the right-handed Henry, who gets the ball to come in and plays it down into the mid-off region, and easy-looking tap shot, and ball collected there and one run taken. Henry goes into 3. She'd taken a couple of runs earlier. Campbell on 12. So we've seen most of the batters struggling. Most of the batters have really been struggling on the pitch here. Here is Gardner coming into ball, this time into Campbell. Campbell goes forward, daringly plays the ball across the line into the mid-wicket region. And before you could say Jack Robinson, she's crossed over for a single. So that is what they should be doing. They should get every opportunity, convert ones into twos, pick up the gaps and not just keep batting on and play their shots. Pick up the gaps, this one, next one, around the wicket, rather over the wicket, correction there. And Henry plays it across to the offside, moving away from the line of the ball, but

0: and can't beat the fielder at wide mid-off. Here's another delivery that comes in, keeps low, and Henry plays it down into the mid-off region. Good call by the known strike, Campbell. They cross over for a single, taking the score up by one more to 66 for four. What a score this is. I mean, it is moving at worse than snail's pace. 66 for four in the almost the 13th over. You've got seven overs to go. Now, how much more really are to play out of the skins? And here's the next delivery, wrapping on the pads. And umpire Kim Cotton says nothing doing. And would that mean that they take a review? They're still talking to each other. The ball came in quite sharply, Sanjay. That was very close.
1: अगर रिव्यू नहीं लिया तो शायद इसलिए कि एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद लेग स्टंप के बाहर जा रही, रिव्यू ले लिया गया है।
0: The review has been taken. Quite an afterthought. You get 30 seconds for that one, and if you don't get that right, then you're gone. So all the players coming in. This shows that the captain has the confidence on the bowler Gardner. And why not? The West Indies team is in dire straits, and the Australian side looking really, really good. So they've taken the review, and the third umpire there, Pereira, she's going to look into it. The only question here is, was the bat involved? Because the ball wasn't going very far away. It was almost like kissing the bat. But only the ultra edge might tell us what really happened, because that's the technology coming into play. The umpire had declared not out. So there should be a compelling reason for the batters to get out if the ball is hitting onto the stumps. We'll have to wait and watch. Where was the ball pitching and where was the ball going? Sanjay, you were probably looking at that option. Was it coming out of the stumps? But here it looks quite close. The ball was below the knee roll, and it appears that she's safe because there is a spike when the ball crosses the bat, and that's the reason the umpire did not give it as out there. And Kim Cotton was absolutely on the target, absolutely spot on. That's experience saying. So Australia has lost one of the reviews. They just got one more review. That was close, Sanjay, but except for the edge, she was absolutely beaten.
1: बिल्कुल बल्ले पर हल्का सा एक स्पर्श हुआ था और जिसका एहसास निश्चित तौर पर फील्डिंग कप्तान को नहीं था.
0: Next delivery outside the off stump. A bit of width offered, and the batter moves away, plays it down into backward point. No runs taken. Very good over from Gardner. Just three singles given away. 66 for four after 13 overs, West Indies.
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: लिए मत, जानिए आभा के बारे में.
5: आभा? अरे, जानो तो जानो बस इतना कि लाइफ इज वंडरफुल फॉर मी. बात सुनो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, लेकिन मैं तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ. तुम दोनों को बारी बारी एक दूसरे का हुक्म मानना पड़ता है, पर मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता. हाँ, मेरा हुक्म मेरा राजा जरूर मानता है.
6: राजा? कौन राजा?
5: है एक राजा. हाय, काश तुम भी चलती मेरे साथ टेनिस मैच में. इतना मजा आया कि
6: मैं तो चाहती हूँ तू अब जल्दी से जल्दी अपना मैच बना ले. कितने रिश्ते आए पर तू अभी अकेली ही घूमती है. मैं पूछती हूँ, आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए?
5: ओह, लड़का? कैसा लड़का? जैसा मेरा राजा है.
6: अरे रे रे, ये किस राजा महाराजा के सपने देख रही है तू?
5: अपने राजा के. ओ मंजू, हाउ ही लव्स मी.
6: हु? कौन? हु लव्स यू? कौन है? कहाँ से आया? क्यों आया? क्या करता है? किसका बोटा है? किसका पोता है?
5: ओफो, तुम्हारे सवालों की तो बढ़ बढ़ती ही जा रही है. मेरे दिमाग में फ्लड आ गया. तो पहले किस बात का जवाब दूं? मुझे बताओ, नहीं तो डूब जाऊंगी.
6: ओहो, उसके खानदान का भी कुछ पता है?
5: अरे मंजू जी जी, उसका खानदान, पानदान, पीकदान सबका पता है. मेरा राजा ऐसा वैसा नहीं है. भगवान कसम, वो तो अकेला कमरे में दरवाजे पर टकटकी लगाए मेरे इंतजार में बैठा होगा.
6: टकटकी लगाए? उसे अपने साथ नहीं ले गई थी? किसका मैच देखने गई थी?
5: दीपक का. बहुत अच्छा खेला, वो यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गया है.
6: दीपक? कौन दीपक?
5: हाँ, वो कौन सा दीपक या किसका दीपक है ये मैं क्या जानू. वहाँ सब बकअप दीपक, वेल डन दीपक, लवली शॉट दीपक कह रहे थे, तो मैं जान गई उसका नाम दीपक है. बस
6: सुन, कहीं हमारा दीपक तो नहीं है?
5: ये तो मैं नहीं जानती कि वो किसका दीपक है, पर आपका घर रोशन करते कभी नहीं देखा उसे?
6: नहीं देखा तो क्या हुआ? सुन, वो कुछ गोरा गोरा सा, कुछ लंबा सा, हसोड़ सा था.
5: अब मैंने गोरा बोरा, लंबा उम्बा, हसोड़ सोड़ की बात तो ठीक से देखी नहीं, पर हाँ टेनिस बहुत अच्छा खेलता.
6: ओहो, तो क्या आंखें बंद करके टेनिस मैच देख रही
5: थी? नहीं, आंखें तो खुली थी पर उसके खेल पर लगी थी. अभी याद करती हूँ. हाँ, कुछ गोरा गोरा, लंबा सा ही है,
6: पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं

0: नहीं देखा उसे?
1: तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है? आता है तीज त्योहार पर।
0: अच्छा, मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं, पर ठीक से कभी बात नहीं हुई। नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू, राजा बेचारा इंतजार करता होगा। बाय बाय। कर दिया।
2: भाभी भाभी भाभी, वो मतलब भाभी,
1: हाँ।
2: वो आपकी बहन है ना?
1: हाँ।
2: उससे मिलना चाहता हूँ।
1: क्यों, टेनिस चैंपियन हो गया है इसलिए?
2: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
1: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
2: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
1: हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
2: वो मेरा नाम जानती है?
1: क्या तुम उसका नाम नहीं जानते?
2: नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। दरअसल मंजू भाभी, बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाह कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है। और फिर भाभी, अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है। और भाभी, फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
1: के बच्चे, तो तुझे भाभी की याद आई। चल कुछ कहेगा अभी?
2: जरूर कहूंगा।
1: तो कहेगा?
2: कहूँ? कह दू भाभी? भाभी असल में बात यह है भाभी, भाभी मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। लो कह दिया, कह दिया भाभी,
1: कह दिया। अब जब वो अपने राजा के गुनगाया करती है।
2: राजा के? कहाँ के राजा के?
1: अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ। डरपोक कहेंगे, कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज्ज शील चाचा ने कहां से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज्ज कहेगी, छोड़ उसका ख्याल।
2: भाभी ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी वो तो देवी है, देवी, कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा। इतनी कोमल गंभीरता, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने।
1: अब मैं क्या करूं, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, आप शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
2: पर भाभी ये राजा है कौन, कब से उसके साथ रहता है?
1: मैं क्या जानू कौन राजा है निगोड़ा, ये बात तो अभी मालूम हुई जब वो तुम्हारा टेनिस मैच देख के लौटी।
2: ओ भाभी, शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या, बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी है, एक बार तुम मुझे मिलवा दो। प्लीज भाभी एक बार मिलवा दो मुझे, मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ, उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ, फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है।
1: अच्छा सुन दीपक, मुझे ख्याल आया।
2: क्या? हा?
1: मैं शील को बुलाती हूँ, और सुन उसे शेर शायरी का बहुत शौक है, जब वो आए तो तू उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुना लेना।
2: तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है, देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है। पर भाभी शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो, आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है।
1: उस दरवाजे के पीछे शील का कमरा है। अरे उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ, देख मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ।
2: अच्छा,
1: तू शेर शायरी का ध्यान रखना। अरे नंदू, ओ नंदू, जरा शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आए। अच्छा सुन, इधर आ, उधर पीठ कर ऐसे खड़े होकर कोई फड़कती हुई गजल गुनगुनाना शुरू कर दे।
2: अच्छा।
1: जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि वो आ रही है।
2: तू छोड़ भाभी।

0: क्या हुआ?
1: शॉक लग गया बिजली का।
0: माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आ रही हैं।
1: वरना आप मेन स्विच शायद ऑफ कर देते।
0: जी
1: नहीं तो कयामत आ जाती।
0: जी जी मैं आपका मतलब समझा नहीं शील जी।
1: शील सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानू, पर हाँ शायद यही थे। ये मेरी बहन शील है दीपक।
0: जी जानता हूँ। जी, जी, जी, जी मतलब ये जानता तो नहीं था पर भाई अब जान।

0: गया।
1: मैं अभी कॉफी को कहा।
0: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया।
1: जी
0: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
1: हजार हजार किस बात के?
0: अरे हजार हजार बातों के।
1: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
0: ओ शील जी पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत ख्वाब देखे हैं जिनमें आप शरीक थी।
1: ओ
0: न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा, हजारों बातें।
1: हो सकता है पर ख्वाबों का क्या?
0: एक शेर कहा है सुना दूं?
1: जरूर।
0: हमें गिला न होता हकीकत से, ख्वाबों का अगर जरिया होता वो सामने होते साहिल पर, जज्बातों का मैं दरिया होता, कभी मेरी तमन्ना भी सजकर

0: क्या होता।
1: वाह वाह,
0: पसंद आया?
1: क्या शेर है जी, बहुत अच्छा।
0: आपको मेरा खेल पसंद आया, मेरे शेर पसंद आए, बस मैं ही पसंद नहीं आया। सुना है कोई राजा साहब है जिन पर आपकी बड़ी इनायत है, क्या ये सच है शील जी?
1: जी जी हाँ, सच तो है।
0: सच है तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ?
1: उनसे मिलकर क्या करेंगे, आप तो शायद मुझसे मिलना चाहते
0: हैं। शील जी प्लीज मजाक मत करिए, असल में बात ये है कि मैं आपसे।
1: जी जी जी क्या?
0: देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहीं तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूँ कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए, साहे के समान आपका पीछा करता रहा पर आपसे भूल न सका। अब आप प्लीज उधर को मुंह कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जी तो हल्का कर लूं।
1: जी बहुत भारी है क्या?
0: शील जी प्लीज, शील जी प्लीज आप उधर देखिए ना। खैर खैर कोई बात नहीं, आप नहीं देखती तो मैं ही इधर देख लेता हूँ और कहता हूँ। शील जी मैं मतलब आई मतलब मैं मतलब आई लव यू।
1: लेकिन क्यों
0: क्यों क्यों क्या राजा आपको क्यों लव करता है जी?
1: पता नहीं
0: तो आप उसे क्यों लव करती हैं जी?
1: क्योंकि वो मुझे बहुत लव करता है।
0: तो मैं भी तो आपको बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी मच लव करता हूँ।
1: वो बहुत बहादुर है।
0: आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या?
1: पर वो बहुत वफादार बहुत लॉयल है।
0: और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है आपको, तो इम्तहान ले लीजिए, अपने राजा से एक बार मिलवा तो दीजिए, जरा मैं भी तो देखूं मैं उससे किस बात में कम हूँ।
1: वो मेरा हर हुक्म मानता है।
0: आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए।
1: देखो
0: देखिए।
1: अच्छा देखूंगी।
0: शील जी आपके महबूब आपके कमरे में है क्या, मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ?
1: शौक से जाइए, मगर जरा संभल के जाइएगा, बड़े बड़े पहलवान भी उनसे डरते हैं।
0: आप फिक्र न करिए शील जी, वो कट लगाऊंगा कि मेरी गेंद उठाए ना उठेगी। और फिर शील जी अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या, कम से कम आपको मेरी बहादुरी का यकीन तो आ जाएगा।
1: तो जाइए, कमरा खुला है।
0: कमरा खुला है लेकिन लेकिन आप साथ नहीं चलेंगी क्या?
1: हाय राम, आपको मेरे साथ उसने देख लिया तो आपकी जान पर बन आएगी। वो बहुत जेलस है। अब वैसे मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगी।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। आपके कमरे में जाने की इजाजत तो है ना?
1: मेरे कमरे में जाने की इजाजत तो राजा ही दे सकता है।
0: ये बात है, तो हो जाए आज फैसला। मेरी महबूबा के महबूब ने ललकारा है, मौत बेहतर है जिसे जिंदगी ने मारा है। अरे शील जी मैं जाता हूँ।
1: जाइए।
0: ओह माय गॉड, ये राजा इनका महबूब। सच में शील जी ये कुत्ता तो बहुत हैंडसम है, बहुत बहुत ही हैंडसम, मुझसे भी ज्यादा, बहुत बहादुर है, बहुत वफादार है। शील जी आपने एक काम बड़ा अच्छा किया जो इसे चेन में बांध रखा था, नहीं तो ये तो सचमुच मेरे भाई।

0: मेरे राजा? हाँ तो आपने देख लिया मेरे राजा को?
1: देख तो आया आपके राजा को पर शील जी, मतलब आप मतलब समझ गई ना?
0: समझ तो गई पर आप मेरे राजा को मुझसे अलग तो नहीं करते?
1: कभी नहीं, कभी नहीं। तुम मेरी महबूबा हो, वो तुम्हारा महबूब सही। खुशी महबूबा की अपनी खुशी बना दूंगा, उनके महबूब के यानी कुत्ते के कदमों पे सर झुका दूंगा।
2: उनके महबूब, अभी आपने विमला रैना की लिखी ये नाटिका सुनी। निर्देशक थे लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए सलमान खान श्रेया घोषाल की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है कुमार ने। संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का और फिल्म का नाम है किक।

जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की

0: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है कौसर मुनीर, संगीत है सोहिल सेन का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।

कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है A.M. तुरास का, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है पद्मावत। नाम एक बार फिर सुनिए, इस गीत को लिखा है A.M. तुरास ने।

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर अंजान ने और फिल्म का नाम है धूम 3।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी

0: मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सांवरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर

0: ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृहमंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्डधारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता e-migrate platform से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता e-migrate platform में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है।

0: इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्र राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
2: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर

0: कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है राजकुमार।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत। गीत है नीरज का, संगीत सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है गैम्बलर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों कार्यक्रम

का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में वो नगमा जिसे लिखा है शवांद रिजवी ने। तर्ज है ओपी नैयर की, फिल्म का नाम है हम साया।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार

0: सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
0: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

अगला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खां, संगीत है मदन मोहन का, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है रोशन का और फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी, यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में, पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए।

सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

कार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ताशी और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिओ जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डी जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या हो गया था वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये गाना सुनूं। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पे बुला लिया, तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत। ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता कमों से कर लो जिंदगी में।
2: समझौता कमों से कर लो जिंदगी में कम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोले किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। मतलब गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संगीत।

0: राजकीय फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबान से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्ही से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार ना हो, वो याद ही क्या जो हर वक्त दिल के करीब ना हो।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलते हुए रात से गुफ्तगु, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं, आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

0: कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमेरिका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia,

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। रात के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में, इसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी